0: 8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय

0: जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

उस परमपिता परमात्मा दे दरबार लगवारियां हाजरी भक्ति संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अते नीदरलैंड विच विश्व संकट दरमियान एक भरोसेमंद पारदर्शी अते भविख लई तैयार सप्लाई व्यवस्था बनाउन लई मिलके काम कर रहे ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 226 परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले विच एक होर मुख मुलजिम मनीषा गुरुनाथ मंदारे नूं पुणे तो गिरफ्तार किया है। सिक्ख्या मंत्रालय ने देश विच स्कूली पढ़ाई विच छड़न वाले खास करके 14 तो 18 साल की उम्र के बच्चों की वधदी गिनती ते चिंता प्रकट की है। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत खेती नूं उत्साहित करन ते विशेष जोर दिता है। भारत ने सिंधु जल संधि बारे गैर कानूनी तौर ते गठित सालसी अदालतां दे हाल ही दे फैसले नूं रद्द कर दिता है। पंजाब चोण कमीशन ने नगर निगम चोणां नूं आजाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग दे नाल नेपरे चढ़ाउण दे लई IAS अते सीनियर PCS अधिकारियां नूं जनरल आबजरवरां वजों नियुक्त किया है। तरन तारण पुलिस ने गुरदासपुर CDM अनुप्रीत कौर रंधावा भ्रिष्टाचार के मामले दे विच गिरफ्तार किया है। खेती विरासत मिशन वालों पराली संभाल अते वातावरण सुरक्षा के लिए 10 रोज़ा पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत। मौसम विभाग ने पंजाब अते हरियाणा विच कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैण बारे यैलो अलर्ट जारी किया है। गांधीनगर च एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप विच भारत की संजना ने औरतों के 70 किलोग्राम वर्ग विच कांसी ते दे 3 तमगे जीते ने। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सोनी सवेर इस प्रोग्राम दे ले बस कुछ कु पलां दा इंतजार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म

0: जी हाँ, ते अच्छे अच्छे दिन दे विच प्रोग्राम दी हो गई है। अच्छी अच्छी शुरुआत इस गीत दे नाल जिसनु गाया सी आशरा भोंसले होना ने। ते लो जी, अज दा दिन ये कहिंदा है कि जिहड़े लोग अपने सुपनियां ते विश्वास रखते ने ना, उही एक दिन इतिहास बनाउंदे ने। सो सुपनियां दे विच विश्वास ते उहनां दे लई कीती होई मेहनत हमेशा ही रंग लियाउंदी है। ते रंग ये वाला हमेशा ही सानू खुशी दे के जांदा है। सो मेहनत तो घबराना नहीं, ते पिछे मुड़ के आना नहीं, ते फिर चलदियाँ ही रहन ये कोशिशां, ते असी अगे वधदे जाइए। बस यही दुआवां, यही अरदास। चढ़दी कला दी जदों अरदास हुंदी है ना, ते फिर दिल जड़ा वो अपने आप ही खुशगवार हो के उहदे विच लग जांदा है जिहदे ते मेहनत दी लोड़ हुंदी है। खैर, प्रोग्राम दे विच लोड़ हुंदी है समें समें ते खूबसूरत गीतां दी। ते लो जी, एक होर खूबसूरत गीत ते फिर दसदे हां अज दा ये दिन इतिहासिक मायना तो किवें खास है।
1: हां जी
2: बीबा जी, ये गाना तुसी गा रहे सी?
1: नहीं जी, रूप ते बसंत गा रही सी।
2: मैं

0: ਬਾਈ ਸਾਗ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਸੋ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਗਾਜਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ।
1: लो जी, विद डायलॉग्स के नाल ये गीत हुणे तुसीं सुन लिया। प्रोग्राम चल रहा जी सोनी सवी ते, प्रोग्राम दे विच हुण अगे तुरीए ते। हाँ, पता एक समा सी जदों सुनेहे कबूतर लैके जांदे सी, फिर चिट्ठियां दा दौर आ गया ते हुण अज एक क्लिक दे नाल दुनिया एक दूजे दे नाल जुड़ गई है। जी हाँ, अज असीं मना रहे हां विश टेलीकम्युनिकेशन अते इनफॉर्मेशन सोसाइटी दिवस, जो सानू टेक्नोलॉजी अते संचार दी अद्भुत ताकत दा एहसास करवाउंदा है। जी हाँ, एक छोटी जिही आवाज़ जो कदे तारां दे राहीं जांदी सी, अज इंटरनेट दे राहीं पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। गल रेडियो दी भी हो रही है। अज असीं गल कर रहे हाँ उसी ताकत दी जिसने दूर बैठे लोगों के दिलों नू जोड़िया, टैली कम्युनिकेशन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अज असी यही दिन मना रहे हैं। अज का युग है तेज़ संचार स्मार्ट टेक्नोलॉजी का, जिथे दूरियां मायने नहीं रखदिया। बिल्कुल जी, एक खास जिहड़ी कोई भी जानकारी हुंदी है वो पलां दे विच ही सब तक पहुँचाई जाती है। तो हाँ, अज का ये दिन यही कहिंदे कि असी इस टेक्नोलॉजी नू सलाम करिए। मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी साडे जीवन नू नवी दिशा दे रही है। तो नवी दिशा जिहड़ी है वो आवाज़ दे राहीं भी दित्ती जाती है। कोरोना काल दे विच भी असी देखिया कि इस टेक्नोलॉजी ने सानू एक दूजे दे कोल बनाई रखिया। मोबाइल फोना ने अपने लोगों नू नेड़े रखिया। ऑनलाइन क्लासां ते पढ़ाई जिहड़ी सी वो जारी रही। वीडियो कॉल्स ने दूरियां नू कट कीता ते रेडियो ने हर घर तक सही

बिल्कुल जी, टेक्नोलॉजी कहती है कि आ जा मेरे पास, पर वो सड़ी थी है कि असी एक टेक्नोलॉजी का किन्ना फायदा चकना है। टेक्नोलॉजी जिहड़ी है वो सानू कई गल्लां दे विच वरदान है, क्योंकि टेक्नीक दे नाल ही जिहड़ी सारी दुनिया है इस वेले चल रही है। सो जिन्हां ने इस टेक्नीक दे विच अपना योगदान पाया उन्हां सब नू सलाम ते शाबाशियां इस टेक्नीक दे लई, इस टेलीकम्युनिकेशन दे लई, इस इंफॉर्मेशन दे लई।

बिल्कुल दोस्तों, शाबाशियाँ। ते शाबाशियाँ मेहनत उदो ही कीती जा सकती है जदों साडी कोल सेहत दी दौलत होएगी। ते यही दौलत सब तो वड्डी है। ते समय समय ते वख वख दिनां दे राहीं सेहत प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ते अज दा दिन यानी कि 17 मई, जिस नूं असी मना रहे हां वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे दे वजों। इस दिन का मकसद लोगों नूं उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे जागरूक करना। जदों खून का दबाव नॉर्मल तो वध हो जाता है उसनों हाई ब्लड प्रेशर ते हाइपरटेंशन कहिंदे ने। इसनों साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि कई बार इस दे जिहड़े लक्षण ने वो स्पष्ट नहीं होंदे। ते हाँ, जो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो फिर जोड़ा दिल है उसते जोर भी बहुत बढ़ जाता है। सो दिल नू स्वस्थ रखन दे लई बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी देखभाल की जाए, उसका ध्यान दिता जाए ताकि दिल इसी धड़कन बखूबी चलते रहन।

जी हाँ, जो खून का दबाव नॉर्मल तो वध, ते फिर ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन क्या जान वाला, संतुलित खुराक दे नाल बहुत फायदा मिल देगा। जिस तो बचना है, नियमित कसरत जिहड़ी है वो करनी पड़ेगी, तनाव तो दूर होना पड़ेगा, ज़्यादा नमक ते जंक फूड तो बचना पड़ेगा, समय समय ते प्रॉपर जिहड़ी चेकिंग है ब्लड प्रेशर दी वो करवानी पड़ेगी, क्योंकि जे दिल खुश, दिल खुशहाल, दिल सेहतमंद, ते सारियां चीज़ां बखूबी सेटल्ड, ते दिल दी धड़कन बिल्कुल ठीक।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: इना जानकारियां तो बाद एक बार फिर तो स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच। जी हाँ, आज जिथे गल हुई आपां कीती वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ते इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे दी, ते नाल ही असी गल कीती है कि अज दा दिन जिहड़ा है उह कहिंदा है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वजों अज मैं मनाया जा रहा है, इस करके तुसी अपने हाई BP दा पूरा पूरा रखना है ख्याल, तां कि इह जिहड़ा ना होवे। 17 मई दा दिन जिहड़ा ना एक होर गल करके भी सेहत वजों जुड़िया होया, विश्व एड्स वैक्सीनेशन दिवस दे वजों वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। अज इसका मकसद HIV तो ग्रस्त जिहड़े लोग ने उन्हां प्रति सुहिरदता पैदा करना ते HIV दे प्रति जागरूक करना। वैक्सीनेशन खोज करन वाले विज्ञानिका दी मेहनत नूं सम्मान देना, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। ते हाँ बिल्कुल, आज दा दिन यही कह रहे कि इस वैक्सीनेशन दे जिहड़े फायदे ने उन्हां नूं चुकीए, आओ सारे मिलके सुरक्षित ते सेहतमंद समाज जिहड़ा बनाउण दा संदेश लईए। ते हाँ अज दे दिन दे विच तुसी इस दे बारे खास जिहड़ी है विशेष जानकारी जिहड़ी है ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਪਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 9:30 ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

सारे कह रहे हैं कि थोड़ा रुक भी जा। शनिवार का दिन सीजन का सब तो गर्म दिन से 39.5 डिग्री पारा जड़ा है वह नोट किया गया। 26 साल मई च 3 गुणा ज़्यादा हीट वेव नू दर्ज किया गया है। ते कल तो फिर लू ते आज भी लू का सिलसिला जड़ा है वह रहेगा। शनिवार सीजन का सब तो गर्म दिन पारा 39.5 डिग्री तक, सारा दिन तिखी धुप, रात नू पारा 24 डिग्री तक रहा। मौसम केंद्र के अनुसार हुण लगातार जिहड़ी ड्राई वेव रहन वाली है। 18 मई नू हीट वेव शुरू हुई सी जिसका प्रभाव 22 मई तक जारी रहेगा। अगले 4 दिनों तक जे मौसम विभाग राही आई सूचना के अनुसार देखा जाए तो तापमान जिहड़ा वह वधदा रहेगा, पारा 41 डिग्री दे पार जाएगा। वैसे भी पिछले 26 साल के मुकाबले इस बार हीट वेव जिहड़ी है उसके दिन ज़्यादा हो गए हैं। साल 2000 तो लैके 2025 के अंकड़े देखिए तो पता लगता है कि इस साल के दौरान मई च औसतन 2 से लेकर 4 दिन हीट वेव दे सी, लेकिन इस साल इसकी संख्या वध के 9 से 12 दिन तक की पहुँच गई है। हीट वेव च पारा 41 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तिखी गर्मी दे विच मई का जिहड़ा आखिरी हफ्ता है वह हवा का घट दबाव होने के करके क्षेत्र के विच सारी तरह सक्रिय रहने वाली है गर्मी। फिलहाल कुछ हिस्सों के विच चक्रवात की संभावना है, पर जिहड़ा बारिश वाला मौसम है वह अजे नहीं लग रहा। खैर मौसम तो यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के विच होर वध रही जिहड़ी गर्मी है उसके लिए तैयार रहा जाए, लू तो बचण दे तरीके अपनाए जान, ते हाँ अपने आप का पूरा पूरा ख्याल जिहड़ा वह रख्या जाए। ते हाँ जेकर बाहर किते जा रहे हो, बच्चों नू स्कूलों भी लिया रहे हो, ते फिर तुसी गिल्ली चुन्नी जिहड़ी है जे तुसी 2-व्हीलर दे हो ते गिल्ली चुन्नी करके उन्हां दे उत्ते पा के लेके आओगे, हाँ चुन्नी तरह दे विच ही सुक जाएगी, बट कुछ समय दे लई जिहड़ी गर्मी दी राहत है वह मिल जाएगी। खैर प्रोग्राम जिहड़ा है ना तो वह समा जिहड़ा है वह कह रहा है कि हुण तुहाडे तों इजाजत भी लैनी पएगी। तो हाँ कुछ स्कूलों दे विच एग्जाम्स अजे भी चल रहे ने, सो बच्चों के इन्हां दिनों दे विच उन्हां दा खासा ख्याल रखो ता कि वह अपने जिहड़े इम्तिहान ने उन्हां दे विच चंगा प्रदर्शन कर सकन। खैर प्रोग्राम हुण सोहणी सवेर नूं इत्थे ही समेटण दा वेला हो गया, सो मैनू रुपिंदर नूं हुण दिओ इजाजत इसी दुआ इसी अरदास दे नाल कि खुशियां खेड़े रहन तुहाडे वेड़े बरकरार, ते तुसी रहो हमेशा ही सेहतमंद ते चढ़दी कला दे विच। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सोहणी सवेर, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 8 बज रहे ने, हुण तो कुछ देर बाद तुसी सुनोगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ ते 8:30 बजे पंजाबी दे विच खबरां। इन्हां सब दे लई थोड़ा जिहा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में

0: रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पी

0: चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन मूल्य करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है।

0: टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to

ने नगर निगम चोणा नू आजाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग दे नाल नेपड़े चढ़ाउण दे लई IAS अते सीनियर PCS अधिकारियां नू जनरल आवाजवरां वजों नियुक्त किया है। खेती विरासत मिशन वालों मुक्तसर फिरोजपुर अते फरीदकोट जिलियां च पराली संभाल अते वातावरण सुरक्षा लई 10 दिना पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत। मौसम विभाग ने पंजाब अते हरियाणा लई विच कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट दे विच कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीती रात गुजरात टाइटन्स नू 29 दौड़ां दे नाल हराया अते बैंकाक विच थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट विच मर्द डबल्स फाइनल दे विच अज भारत दे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी दा मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी नाल होवेगा। ई सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सुर साधना शास्त्रीय संगीत दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुनदे हां पंडित हरविंदर कुमार शर्मा होना दा सितार ते वजाया राग भटियार।

0: शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च हुणे तुसी पंडित हरविंदर कुमार शर्मा हुणा दा सितार ते वजाया राग भटियार सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे साडे नूं होए ने पेश है जी प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
1: ज्ञान विज्ञान दा ए अंक लैके असी हाजिर हां। सारे सुनन वाले नू नमस्कार। अज इस विच कौमांतरी दूर संचार ते सूचना समाज दिहाड़ा इस विषय ते वार्ता होएगी प्रोफेसर रविंद्र कुमार होरां दी। इस अलावा विज्ञानिक तत्थ ते विज्ञान नाल जुड़ियां खबरां भी होणगियां। शुरुआत करदे हां विज्ञानिक तत्थ नाल।

0: आम ज्ञान, एक बच्चा क्लास विच सब तो ऊपर है पर उसका कोई दोस्त नहीं है कि ये IQ ते EQ विच अंतर है। असी एक बच्चे नू तेज दिमाग वाला मानते हाँ जेकर वह क्लास विच सवालों के जवाब जल्दी दे सकता है ते गुंझलदार गणितिक समस्यावां नू हल कर सकता है। ये तेज बुद्धि साडा इंटैलीजेंस कोशंट बढ़ाती है। एक अर्थ विच IQ साडे दिमाग की सोचने ते याद रखने की समर्था नू दर्शाउंदा है। जदों तुसी किसी विज्ञानिक प्रयोग नू समझते हो जां फिर बुझारता नू हल करदे हो तां तुसी अपने IQ की वरतों कर रहे हो। इतिहासिक तौर पर लोग मानते सन कि एक व्यक्ति का IQ जिन्ना उच्चा होगा वह जिंदगी विच उन्ना ही सफल होगा। कोई कह सकता है कि यह मुख्य तौर पर साड़ी अकादमिक सफलता नू मापता है। हालांकि की तुसी कदे सोचा है कि क्लास विच सब तो वध अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हमेशा सारे नाल दोस्ती क्यों नहीं कर सकता जां अपने गुस्से नू प्रभावशाली ढंग नाल प्रबंधन करने लिए क्यों संघर्ष कर सकते ने। ये वो थां है जिथे दूजा ते दलील नाल वधेरे महत्वपूर्ण कारक खेड विच आउंदा है। भावनात्मक कोशंट EQ जिस नू भावनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। EQ दूजे दियां भावनावां नू समझण दी योग्यता नू दर्शाउंदा है जदों कि इक्को समय अपनियां भावनावां नू प्रबंधन करता है। जेकर कोई दोस्त नाराज़ है तां तुसी जानदे हो कि उन्हां नू किवें दिलासा देना है जां जे तुसी किसी चीज़ बारे गुस्से होण ते अपने आप नू शांत कर सकदे हो तां तुहाडे कोल इक मजबूत EQ है। अजकल स्कूलों तो लै के खेडां दे मैदानां ते इथों तक कि काम वाली थां तक EQ नू जीवन दे हर खेत्र विच IQ वांग ही महत्वपूर्ण मनिया जांदा है। IQ ते EQ विच अंतर। बौद्धिक शक्ति IQ अते भावनात्मक सूझ EQ विचकार मुख अंतर। हुण तक तुसी संभावित तौर ते IQ ते EQ दोवां दियां परिभाषावां नू समझ लिया होवेगा। आओ हुण इन्हां दो भागां विचकार मुख अंतरां दी पड़चोल करिए। बुद्धि भाग IQ माप। यह मापदा है कि तुसी किन्ने स्मार्ट हो, खास तौर पर तुसी किन्नी जल्दी सीखते हो, तुसी किन्नी जानकारी रखते हो अते तुसी गुंझलदार समस्यावां नू हल करने लई तर्क किवें लागू करते हो। उदाहरण गणितिक समीकरणों नू हल करना, एक नवी भाषा के व्याकरणिक नियमों नू समझना। भावनात्मक भाग EQ माप। यह मापदा है कि तुसी किन्ने स्याणे या फिर भावनात्मक तौर पर बुद्धिमान हो, खास तौर पर तुसी अपनियां भावनावां अते दूजियां दियां भावनावां नू किन्ने प्रभावशाली ढंग नाल समझते अते प्रबंधित करते हो। उदाहरण किसी दोस्त नू दिलासा देना जदों ओह परेशान होवे, टीम विच सारे नाल मिल के काम करना। बौद्धिक योग्यता ये अक्सर जन्म तो ही हुंदा है, जन्म तो मौजूद इस नू वधाउणा मुश्किल हुंदा है ते जीवन भर स्थिर रहिंदा है। भावनात्मक बुद्धि इस नू सिख्या ते सोधिया जा सकता है। जिवें जिवें तुसी वधदे हो तुसी दूजियां नाल गलबात ते जीवन दे तजर्बियां राहीं इस नू सुधार सकते हो। सफलता विच किहड़ा भूमिका निभाउंदा है IQ दी भूमिका। ये तुहानू परीक्षावां पास करन, उच्च ग्रेड प्राप्त करन ते नवे तकनीकी हुनरां विचों मुहारत हासिल करन विच मदद करदा है। EQ दी भूमिका ये तुहानू दोस्ती बनाउण, टीम लीडर बनन, टकरावां नू हल करन ते खुशी लभण विच मदद करदा है। याद रखो क्लासरूम विच IQ तुहानू इक टॉपर बना सकता है पर जिंदगी विच EQ तुहानू इक सफल ते प्यारे इंसान बनाउंदा है।
1: दोस्तों अज दे समें विच वक्ख वक्ख किस्मां दे वायरसिस समें समें ते अपनी दस्तक देंदे रहिंदे ने ते मनुखां दे लई नवें खतरे पैदा करदे ने। एक अजिहा ही वायरस है हंटा वायरस जिस बारे दुनिया भर दे विच गल हो रही है। आओ जानदे हां इस दे बारे। दुनिया विच समें समें उत्ते कई वार वायरस मनुखी सेहत लई वड्डी चुनौती बन के सामने आउंदे रहे हन। COVID-19 तों बाद लोकां विच वायरसां बारे जागरूकता वधी है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਹਿਆਂ, ਗਲੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਫੀਵਰ ਵਿਦ ਰੀਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹੰਟਾਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੰਟਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਲਾਰ ਅਤੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ

0: पूर्ण इलाज अजय तक उपलब्ध नहीं है। एचआईवी एक वायरस है जो मनुखी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली नूं कमजोर करता है। इस नाल शरीर वक-वक संक्रमण ते बीमारियां दा आसान निशान बन जाता है। जदों ये वायरस अगे वध के गंभीर हालत विच पहुंच जाता है तो इस नूं एड्स कहा जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की शुरुआत 1997 उस समय हुई जदों उस वेले दे अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक भाषण विच विज्ञानियों नूं एचआईवी के खिलाफ टीका विकसित करने लई प्रेरित किया। इस दिन नूं एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ विज्ञानियों के यतना नूं सन्मान देना भी नहीं सगो आम लोगों विच भी यह जागरूकता फैलाना है कि टीका क्यों जरूरी है अते इसकी खोज विच किन्नी चुनौतियां आ रही हैं। एचआईवी या एड्स एक विश्व पदरी सेहत समस्या है। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ लोग इस वायरस नाल प्रभावित हैं। यह वायरस मुख्य तौर पर असुरक्षित यौन संबंधा संक्रमित खून सांझियां सूईयां अते मां तो बच्चे विच संचार राही फैलता है। इसलिए इस बीमारी तो बचा लई सुरक्षित आदतां बनाउणियां बहुत जरूरी है। वैक्सीन की लोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बीमारी के फैलाव नूं रोकण दा सब तो प्रभावशाली तरीका हो सकता है। हालांकि एचआईवी के खिलाफ टीका बनाउणा बहुत मुश्किल है क्योंकि यह वायरस तेजी नाल अपना रूप बदलता है। इस कारण विज्ञानियों लई एक ऐसा टीका तैयार करना चुनौतीपूर्ण है जो हर किस्म दे वायरस ते प्रभावशाली होवे। फिर भी दुनिया भर दे विज्ञानी अते खोज संस्थावां इस ते लगातार काम कर रही हैं अते कई ट्रायल्स भी चल रहे हैं। इस संदर्भ विच यूएन एड्स अते होर अंतरराष्ट्रीय संस्थावां भी वड्डी भूमिका निभा रही हैं। यह संस्थावां सिर्फ खोज नूं ही नहीं सगो इलाज अते जागरूकता मुहिमां नूं भी समर्थन दे रही हैं। अजकल एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी की मदद नाल एचआईवी नाल जी रहे लोग लंबी अते सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। पर फिर भी एक पक्का टीका ही इस बीमारी नूं पूरी तरह खत्म कर सकता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सानू ए भी सिखाउंदा है कि सिर्फ विज्ञानक यतना नाल ही नहीं सगो समाजिक सहयोग नाल भी इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। एचआईवी एड्स नाल जुड़ी स्टिग्मा ते भेदभाव भी एक वड्डी समस्या है। कई लोग इस बीमारी के डर कारण जां समाजिक दबाव कारण टेस्ट करवाउण तों कतराउंदे हन जिस नाल बीमारी का फैलाव वधदा है। इसलिए सानू लोगों को समझाना चाहिए कि यह एक मेडिकल स्थिति है अते इस नाल पीड़ित लोगों नाल सहयोग अते संवेदना नाल पेश आना चाहिए है। सिक्ख्या अते जागरूकता इस लड़ाई विच सब तो महत्वपूर्ण हथियार हैं। स्कूलों कालजां अते कम्यूनिटी पद्धर ते लोगों नू एचआईवी ते एड्स बारे सही जानकारी देनी चाहिए है। सुरक्षित यौन व्यवहार साफ सुइयां दी वरतों अते नियमित टैसटिंग जिवें कदम इस बीमारी नूं काबू करन विच मदद कर सकते हैं। इस दिन दे मौके ते दुनिया भर विच वक-वक प्रोग्राम सैमीनार अते कैंप लगाए जांदे हैं जिथे लोगों नूं एचआईवी टैसटिंग अते काउंसलिंग दी सहूलत दित्ती जांदी है। इह यतन लोगों नूं ना सिर्फ जानकारी दिंदे हन सगो उन्हां नूं अपने सेहत बारे जिम्मेवार बनाउंदे हन। अंत विच वर्ल्ड एड वैक्सीन डे सानूं इह संदेश दिंदा है कि भावें चुनौतियां वड्डियां हन पर उम्मीद भी उन्नी ही मजबूत है। विज्ञान की तरक्की समाजिक सहयोग अते जागरूकता दे नाल असी एक दिन जरूर इस बीमारी तो काबू पा सकांगे। आओ असी सब मिलके वचन लईए कि असी एचआईवी एड्स बारे जागरूकता फैलावांगे सुरक्षित आदत अपनावांगे अते इस बीमारी दे खात्मे लई यतन करांगे। यह दिन सानू उम्मीद संघर्ष अते मनुखता दी जित दा प्रतीक लगदा है।
1: इस दे नाल ही ज्ञान विज्ञान दा अंक हुण समाप्त होया। आग्या चाहांगे, नमस्कार।
2: इसी अज दा प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दी 10 बजे नी पेश नी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री रोब जेटन विचकार विचार वटांदरे तो बाद दोवां मुल्कां ने दुवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक वधाउण दे लई सहमति प्रगट कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज स्वीडन दे दो दिनां दे दौरे ते पहुंचणगे। मध्य प्रदेश उच्च अदालत दे फैसले तो बाद भारती पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਚ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

0: इजाजत दिती। सरकार ने चांदी की दरामद से पाबंदी लगाई, इसनों मुक्त तो पाबंदी शुदा श्रेणी दे विच रखिया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी विच हवाई बाजी टरबाइन इंधन ते वैट नू 25% तो घट करके 7% करन दा फैसला लिया है। पंजाब चोण कमीशन ने नगर निगम चोणां नू आजाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग दे नाल निपड़े चढ़ाउण दे लई IAS अते सीनियर PCS अधिकारियां नू जनरल ऑब्जर्वर वजों नियुक्त किया। खेती विकास मिशन वलों मुक्तसर, फिरोजपुर अते फिरोजकोट जिलियां च पराली संभाल अते वातावरण सुरक्षा लई 10 दिना पराली संभाल चेतना यात्रा दी शुरुआत। मौसम विभाग ने पंजाब विच हरियाणा विच कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैन बारे येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट विच कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीती रात गुजरात टाइटन्स नूं 29 दौड़ां दे नाल हराया। अते बैंकॉक विच थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट मर्द डबल्स फाइनल्स दे विच अज भारत दे सात्विक साईराज ते रंकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी दा मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी दे नाल होवेगा। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेशी जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। आज दे इस प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत कर दे हां। जी हाँ, तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकदे हो, सुन सकदे हो अपनी पसंद दा गीत। जी हाँ, हिंदी गीत 0181-343-173 नंबर मिला के तुसी साडे इस प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकदे हो। ते प्रोग्राम दी शुरुआत एक खूबसूरत गीत दे नाल।

0: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश ते अगली हैलो किना दी है आओ जान दे आ। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी,
1: हां जी, कुमार बोल रहा हूं, पंडित बोटा के तहसील मगेरियां डिस्ट्रिक्ट चार तो।
0: स्वागत है जी, साढ़े पहले कॉलर जिन्हों की आवाज़ भी पहुँच रही है सारे तक। तो दसो जी, तुहाड़ी पसंद का गीत केड़ा पहुँचा दिए?
1: जदों के मौसम का सुना दो जी, अनुराधा पोटवाल की आवाज़।
0: ठीक है जी, अनुराधा पोटवाल होना की आवाज़। ठीक है जी, लो जी, इन्हों तक इन्हों की पसंद का गीत पहुँच रहे। जेकर तुसी भी अपनी पसंद का गीत सुनना है तो 081 143 173 नंबर कर रहे, साढ़ा इंतजार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार, हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम चल रहे जी। हेलो फरमाइश ते अगले कॉलर पहुंच गए नहीं सर कोल। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी।
1: भाजी कृष्ण सिंह बोल रहे हैं जी, पिंड छत्तीस वाला जिला फाजिलका जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी।
1: धन्यवाद जी।
0: दसो जी गीत केड़ा सुनोगे?
1: गीत सुना दो जी, प्यार का तोहफा, तोहफा फिल्म का गीत जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन कॉल मिलाने के लिए।
1: धन्यवाद जी।

0: ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੀਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 billion का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 billion से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 kg CNG की नई दर

0: ₹80 नौ पैसे, गाज़ियाबाद और नोएडा में ₹88 सत्तर पैसे और गुरुग्राम में ₹85.12 हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में ₹2 की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर S. वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड Waves OTT app now एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 873 kHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

कातों मरहरा दरवाज़ा इटा तो नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ अब्बासी, सारा परिवार, अर्शदीप, सुरजीत अमरकोट तो, पिंड डाकखाना खुईया सरवर तहसील अबोहर तो, रमेश बिल्ला चावला, रायजल हेजल, विहान चावला, आस्था जयश्री, संतोष, हेमंत दीपक, रमेश, बिब्बू बिहू चावला परिवार सारा, बग्गा पुराणा तो, सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, पोतरा तेग फतेह सिंह, पोतरी जसकुन रखड़ा ते परिवार, छोटी बलिया मुंबई करजत तो, अहमद भाई दुखना, सदक इमरान, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया आशु ते अहमद, पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदा मंडी जिला जींद, हरण तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत लवप्रीत, करमजीत ते परिवार, कृष्णा पाक दिल्ली तो, सुखिंदर सिंह जोड़ा सी टी दीवाना, पिंड चमका तो देविंदर सिंह राणा, राजा सुखा जोगी, अमन पलक सोनी ते रैंपी ते राजपीर, इन्हें सब की फरमाइश ते आओ सुनते हैं गीत आवास है निर्माण होरां दी।

जगप्रीत, मनप्रीत, करमजीत, चरणजीत, पोती नवकीरत, गुरसीरत कौर, पोता गुरताप सिंह ते परिवार सारा। सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत ते सोनम, मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, नरजान, अब्बान अब्बासी परिवार सारा, अपरकोट मोहल्ला चौखनूटी बुलंद शहर तो। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक ते बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश तो। प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, अनन्या, अनुष्का, राकेश कुमार, ममता रानी खुराना परिवार, पिंड बिल्ली मारतों। सेक्टर 5 कुडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित ते बेबी करवी। दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड तो मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन बाबू ऐद, मिफरा नास ते बेबी चाहत, पिंड चांद मारी तो मंगत राम, जगदीश, संदीप, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण, प्रतीक ते परिवार सारा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो। पिंड कुणियाणा जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह, मनजीत कौर, दपिंदर, गुरशबर, जीत सिंह सारा ही बराड़ परिवार, सुखदेव सिंह बुरज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत गिल मलोट तो। पिंड सावंतखेड़ा मंडी इड्डावली तो किशन लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र ते परिवार। चक 14 PSP जिला श्रीगंगानगर तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप, जसकरन, हरदीप, मंदराज, विरक ते परिवार इन्हों का। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश तो, सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाति गाजीपुर उत्तर प्रदेश तो, जायसवाल परिवार सारा। गमरिया जमशेदपुर तो रोहन आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली तो विजय ते सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर तो मराहू देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली तो सुंदर ते सुमन। मनीला फिलिपन तो मदन मोल लहर, सरबजीत, संजू, नितिका, अजय, एंजल, लाडला पोता, अर्नव लहर, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, विजय कुमार सारा परिवार। पिंड बाजितपुरा फाजिलका तो, मेन बाजार मंडी लादुका तो, फाजिलका तो वरिंदर, रेखा, प्रीक्षित, प्राची ते सारा ही कालड़ा परिवार। पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशिप, अनत ते पोत्रा, गुरशबद, विक्की माल, संतोष माल, रोनित पूरा माल परिवार। पिंड साबुआणा जिला फाजिलका तो, चक 15 PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर, गुरमन्नत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तो, अर्दश पाल वैंकूवर कनाडा तो, रॉबिन सिंह जोसन ते परिवार, बलकीत सिंह मेन बाजार गुनियाणा मंडी तो, जोगिंदर, सुरजीत, कलविनीत सिंह, जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, नीरज भुवनपुरा मक्कड़ परिवार, कुलभूषण, कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, वासदेव छाबड़ा, अंश, दिव्यांशी, चिराग, साजन, लालड़ू मंडी तो। आओ सुनते हैं सब दे फरमाइश ते गीत। आवाज़ है सुरेंद्र कौली दी।

शुभलता, संदीप, प्रियंका, विशेष, रिया, रोहित, राधिका, संस्कृति, खजाना गेट अमृतसर तो, गुरविंदर सिंह लुधियाना तो, सुरेश अग्नेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, नियमित अहूजा जलालाबाद पश्चिमी तो, दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबर चंग सिंह चीमा पिंड लूणा म्याणा तहसील पायल जिला लुधियाना तो, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर ते मोहम्मद कलीम अंसारी पिंड हांडे खेड़ा जिला सिरसा तो, राधेश्याम इंदिरा ते सार्थक शर्मा, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाज शेख, तानिश अमन अफरीदी लखनऊ उत्तर प्रदेश तो, मोहाले तो अमरदीप सिंह सैणी, लाभ कौर, जीवनजोत कौर सोनी, सैवी, निदिश सैणी कनेडा तो, सारे ही सैणी परिवार, मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकर, ये सबने उत्तर प्रदेश तो सुन रहे हैं। सब की फरमाइश से गीत आवाज़ है गीता सैलदार की।

ओंकार सिंह की आवाज़ सुनी तुसी ये गीत सुन रही सी और अगले गीत की फरमाइश इस तरह कोटली कला तो यादविंदर सिंह सुखविंदर रविंदर मनजीत ते गुरजोत डिंपल अदिति पुनीत प्रवीन लालड़ू मोहाली तो पिंड बसोली नेड़ी लालड़ू मंडी तो साधु सिंह भट्टी आरव शकीला कुलवंत टीनू ते इना दा परिवार पिंड चगूड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव प्रवीन युगम वीरेन ते मनराज गुरजीत मलकीत गुरतेज ते परिवार हुशियारपुर तो पिंड ढाणी नत्था सिंह जलालाबाद पश्चिमी तो रेशम सवना संदीप रमनदीप सोमा संजना किरना निशा कीरत इंद्रगढ़ संगरिया तो सरोज पीनू नितिन रजनीश आरती लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सुखा सिंह सिद्धू अभिज सतिंदर सिद्धू नवनीत खुशी ते सारा ही सिद्धू परिवार पिंड कंदवाला हाजर खान जिला फाजिलका तो इस गीत की साढ़े को फरमाइश है एने दर्शन सिंह अवतार जिला लुधियाना तो संतोष पाकरे सुनैना सुकन्या सविता नांदेड़ महाराष्ट्र तो मल्टन कनाल तो सुधीर नूतन संदीप गुगलानी चकवान प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत मलोट तो कुलवंत रमन ते परिवार परमवीर हाउस आदर्श नगर भिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर प्रवीण विक्रमजीत अनमोल ते पवनीत ब्रैम्पटन कनाडा तो निखिल नमीति नीति ते मेरीन भाटिया रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला शोभा नायक जेएस नायक पूरा डागला परिवार सनी बॉबी सोनू बिट्टू कचूरा पिंड घूरी जलालाबाद तो किला रहमतगढ़ मलेर

कोटला था मोहम्मद इकबाल कुकू, मोहम्मद शमील छांगा, निसार ते जग्गा राम। परमजीत पूर्बा कक्कड़वाल तो इन्हां दे नाल ने करमजीत पमाल, मिंटू, अमरीक, जलान, रमन ते प्रिंस। सुनदे सब दी फरमाइश ते गीत आवाज़ है जसविंदर नरूला दे।

अगले गीत की फरमाइश शेष रहे हीरामणि वर्मा पारस पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा छत्तीसगढ़ तो। हरजिंदर सिंह बराड़ मेला सिंह सिद्धू पिंटे डाकखाना बठिंडा तो। सुरेंद्र संधु अनीता रितेश प्रतीक्षा संधु ते मैक्स हरगोबिंद नगर नवां शहर तो। कोटली कला तो यादविंदर सिंह सुखविंदर रविंदर मनजीत ते गुरजोत। इस गीत की फरमाइश है पिंड माधोबार मुक्तसर साहब तो भुपिंदर सिंह शिवराज करणबीर सिंह ते परिवार। आओ सुनते हैं सब की फरमाइश से गीत। आवाज़ है जीत खान होरां दी।

0: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: जय हिंद।
1: प्रतिभा दे वणजारे बच्चे, सूरज चंद सितारे बच्चे। और वाकई जी सूरज चंद सितारे बच्चे ने, और इन्हां चंद सितारियां दे लई, प्यारियां प्यारियां दे लई बाल जगत प्रोग्राम आउंदा है जी हर ऐतवार दी दोपहर नूं, और इन्हां दियां हाजरियां लगवाउण नूं, इन्हां दे नाल बातां पाउण नूं। और लो जी तुहाडे रेडियो सैट उपर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम बाल जगत लै के।
0: जी बिल्कुल, जिथे सुखदीप जी एक पासे कह रहे ने प्रतिभा दे वणजारे बच्चे, सूरज चंद सितारे बच्चे, तो उत्थे ही कहना बनता है कि कुदरत कहंदी हो नहीं सकदे इक आदत दे सारे बच्चे।
1: बिल्कुल जी, एक आदत दे बच्चे सारे नहीं हो सकते, पर देखो जी बच्चे जेड़े सारे ही ने ना, इन्हां च खूब सारी प्रतिभा है। और देखो पहलां ते प्यारे बच्चे, खूब सारियां ताड़ियां वजाओ अपने लिए जिन्हां ने दसवीं बोर्ड दी विचों चंगे नंबर लए ने। और खास करके गुरप्रीत, पता की होया इस वारी बड़ियां मल्लां मारियां ने पिंडां वालिया ने। और देखो जी अक्सर करके पिंडां वाले अपने आप नूं फखर नाल कहिंदे ने कि असीं पिंडां वाले हाँ, और शहरां वाले कई वारी कहिंदे ने कि जी देखो असीं शहर च रहिंदे हाँ, असीं ज़्यादा वधिया स्कूल च रहिंदे हाँ। पर जिहड़े ये पिंडां वाले बच्चे ने ना, इन्हां ने इस वारी बोर्ड के पेपरां दे विच झंडे गड़ ले ने, और जिहदे लई इन्हां दे माता पिता, इन्हां दे स्कूल दे अध्यापक ते ये खुद बहुत बहुत बधाई दे पात्र ने।
0: जी बिल्कुल, और जदों असीं बच्चों गल करदे आ ना, किसी भी चीज़ दे विच जदों तुसीं कोई जित हासिल करनी हुंदी है, खुशी अपनी झोली दे विच पाउणी हुंदी है, कोई भी कारगुजारियां करनियां हुंदियां ने, ते सब तों जरूरी चीज़ है तुहाडा चौगिरदा, तुहाडा आला दुआला, तुहाडे घर दा माहौल, तुहाडा स्टडी दा माहौल, और किस तरीके दे नाल तुसीं अपने दिमाग नूं लैके चलदे हो, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा जिहड़ा है उह शैतान हुंदा है, नौटी हुंदा है। हल्का जिहा तुहाडा डाइवर्जन हो गया ध्यान दा इधरों उधर, ते तुहाडे दो दो तीन तीन घंटे दी स्टडी खराब हो जाती है। जेकर उही कंसंट्रेशन तुहाडी बनी रहिंदी है, ते तुसीं एक वारी बैठिया ही तीन चार हैवी वाले टॉपिक्स चंगे तरीके दे नाल रिवाइज कर सकदे हो।
1: सो प्यारे बच्चे, हुण तुसीं नवीं क्लास, वड्डी क्लास दे विच जाण वाले हो, उहदे लई असीं तुहानूं

0: और वाकई जी परमात्मा अगे प्रार्थना करते रहो और अपना कर्म भी जरूर करते रहो ता जो जिंदगी दे विच तुहानूं कामयाबी मिले, शांति मिले, तरक्की मिले। और प्यारे बच्चों का मनपसंद वाला प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और सुखदीप और गुरप्रीत ने तुहाडे नाल प्यारे बच्चे, और हुण पता किहदा वेला है गुरप्रीत जी?
1: जी बिल्कुल, जदों असीं गल करदे हां वारियां दी ते वारी जिहड़ी है गल्लां बातां हो गईआं ने, नाल दी नाल मनोरंजन दी दुनिया दे वल वी तुहानूं लै के जा चुके हां। सो नन्नी कलम दी वारी है जी, नन्नी कलम तों दे सिलसिले दे जरिए वख वख तरह दीआं परफॉर्मेंसिस सारे ही बच्चे रिकॉर्ड करके सानूं भेजदे ने। सो आगाज़ करदे हां जी नन्नी कलम दा इस खूबसूरत जी परफॉर्मेंस दे नाल, जिहड़ी कि ब्यास तों खास करके बच्चों ने रिकॉर्ड करके भेजी है ग्रुप आइटम। आओ सारे रल मिल के सुनदे हां।
2: मैं शगुन, दिवजोत, नवप्रीत, अमृता, अज असी तुहाडे सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करन जा रहे हां।

0: मेरा सोने पीरे नु भुख लगी हुई है, दूध लेना। बोलना दूध लेना ते। समझी तेरी अफलातूनी नु।
1: मम्मी बाबू नु दूध
2: बेटे जे हुण ते मैनू दुध पिया के हटियां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: ये शीला अद्धी टैंकी तू पानी दिलाती आ लगदा तो तप दिला।
1: अरे कहाँ बीबी जी, गाड़ी रोज धुलाते हो, बेरा साफ कराते हो और पानी बेचते शीला के नाम लगाते हो। आ चुको अपना पतीला, कल से नहीं आती शीला।
0: नी गल तो सुन।
1: मैं कोई गल गुल नहीं सुननी हैगी। पानी बचाना चाहिदा, पानी बचाओ, पानी वेस्ते शीला के नाम मत लगाओ।
2: पानी दी करो वरतों, ना करो दुर्वरतों।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं

0: ਮੰਗਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये

0: ते सुनदे से फिल्म त्रिशूल दा नगमा।
1: तीन महीने च पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट ते हाई रिटर्न्स भी।
1: की स्कीम है, कल तो नहीं सी इत्थे
3: ते कल होवेगी भी नहीं। तू कदे पंज ओवरां च डबल सेंचुरी मारी है?
4: एहो जही स्कीम दे बहकावे विच आके असी धोखा खा सकदे आ।
3: ते आरबीआई कहंदा है अपने पैसे सुरक्षित रखो ते समझदारी नाल निवेश करो। जे ज्यादा रिटर्न्स दे पिछे भजोगे तां रिस्क भी ओना ही लाओगे
2: ते फास्ट रिटर्न्स तो बच के
3: ते फास्ट बोलिंग तो भी। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
0: अगला गीत मान जाइए फिल्म का है, मुकेश ते वाणी चेहरा हम तक आया।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज़्ज़त माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वज़ीरे आज़म मोदी के इस दौरे से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नताइज से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, ख़ासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा

0: काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज़ का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज़ रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज़ पर हमले के चंद रोज़ बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैनुल अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैनुल अक्वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपये की होगी, जबकि गाज़ियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपये होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जाँच कराएँ। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुँचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अबनाए हुरमुज़ में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत

0: है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਦੇ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਪੂਨਮ ਕੀ ਰਾਤ।

0: आशा भोसले के साथियों दा इसी फिल्म पूनम की रात दा गीत सुन रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार दी आवाज विच, फिल्म है चलती का नाम गाड़ी।
1: वो थी हम

था मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो, हा हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो, हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो, हा हा हा।

हो सुन रहे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

0: धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी, हुणे तुसीं इस फिल्म दा गीत सुन रहे सी किशोर कुमार ते अनूप कुमार दी आवाज़ विच। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत, गायक कलाकार मन्ना डे, लता मंगेशकर, फिल्म है सती सावित्री।

0: ਅਨੋਖੀ ਅਦਾ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੀਡਨ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ। ਵੇ ਸਵੀਡਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਆਪਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧੋਂ ਕੋ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਕੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਬੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ 17 ਸਮਝੌਤੋਂ ਪਰ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਸ ਜਲਡਮਰੂ ਮਧ੍ਯ ਮੇਂ ਵਿਆਪਾਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਪਰ ਹਮਲੋਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੇ ਅਸਵੀਕਾਰ੍ਯ ਬਤਾਇਆ। ਕਹਾ, ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਕੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਹੀ ਮੇਂ ਬਾਧਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਸਥ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਔਰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਮੇਂ ਇਬੋਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਤਾਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਜ ਅੰਡਮਾਨ ਔਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਉਪ ਹਿਮਾਲਯੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਸਿੱਕਿਮ ਮੇਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨੋਂ ਪਰ ਅਤਿਅਧਿਕ ਤੇਜ਼ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਕੇ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਕਾਮੀ ਰੀਤਾ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ 32ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਪਰ ਚੜ੍ਹਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुस की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी

0: ताजा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब युटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली

मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ

0: प्रसंग श्री गुरु नानक देव जी। कुलदीप सिंह बलौकी कविश्वर ते साथियां दी गाई हुई एक कविश्री तो सुन रहे सी। ए सी प्रोग्राम रंगली धरती आकाशवाणी का, यह है जलंधर केंद्र। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से 3 बजे ने साड़ी ये सभा समाप्त होंदी है। अगली सभा नाल जुड़ेंगे 4 बजे। तद तक लिए आज्ञा दिओ, धन्यवाद।
1: DTHDR पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:07 हो चुके हैं, तो समा हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।

हाँ जी दोस्तों, ये प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियाँ मिठियाँ, तो मैं आरजी पूनम सेठी थोड़े नाल इस वक्त जुड़ी हुई हाँ। बहुत ही प्यारा गीत सी यारा मेरे यारा, तो यही सी साढ़े हरभजन मान जिन्हां दी आवाज़ बहुत ही दिल नूं लग जाती है। हुण आपां गीत सुन रहे सी हरभजन मान दी आवाज़ विच, तो थोड़ा जिहा उन्हां दे बारे थोड़े नाल गल्लां शेयर कर लैंदे हां। हरभजन मान नूं बठिंडा दे पिंड खेमुआना विखे जम्मे मान ने पंजाबी सभ्याचार नूं प्रफुल्लित करन विच अहम योगदान पाया है। उन्हां दी सुपरहिट फिल्म जी आया नू ने डुबदे पंजाब बी सिनेमा नू मुड़ सुरजीत कीता सी। हरभजन मान ने अपने छोटे भरा गुरसेवक मान नाल मिल के बचपन तो ही कविश्री गाउणी शुरू कीती सी, ते कुछ उन्हां दे मशहूर गीत भी ने जिवें कि चिठिए नी चिठिए, जग जींदुआं दे मेले, मिर्जा ते दिल मेरा। कुछ मुख फिल्मां भी ने जिवें कि जी आया नू, आसा नू मान वतना दा, मिट्टी वाजा मारदी, जग जींदुआं दे मेले ते हीर रांझा। ये सी साढ़े प्यारे हरभजन मान, ते हुण आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने आ। चिट्ठी आई है गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी वल्लों। ये नछत्तर गिल दी आवाज़ विच कोई भी पंजाबी गीत सुनना चाहुंदे ने। असीं तुहाडे वास्ते एक बहुत ही प्यारा जिहा गीत लभ लिया है, ते थोड़ी जी देर च आपां उहदा गीत जरूर सुनांगे। इस तों इलावा चिट्ठी आई है मेहस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत वल्लों। फिर चिट्ठी आई है श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा वालों। इन्हां तों इलावा सानू चिट्ठी भेजी है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक ने। आओ सुनते हैं आप अगला गीत गोरे रंग ने नछत्तर गिल दी आवाज़

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिठियां मिठियां, ते मैं आरजी पूनम सिटी इस वक्त थोड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। जिहड़े स्रोते साडे नाल हुणे हुणे जुड़े ने, मैं उन्हां दा वी दिल दी गहराई तों निघा स्वागत करदी हाँ। इस वक्त आपां हुणे गीत सुन रहे सी अमर नूरी दी आवाज़ विच, सोने नैना वाले दे जा करेले। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उन्हां दी, ते हुण आपां थोड़ी जी गल्लां करांगे उन्हां दे बारे। उन्हां दा जन्म 23 मई 1967 नूं पिंड रंगीलपुर जिला रूपनगर पंजाब विखे होया। छोटी उम्र तो ही गायकी शुरू करन वाली अमर नूरी ने मरहूम महान गायक सरदूल सिकंदर नाल ब्याह करवाया सी। मुढ़ला जीवन दे बारे गल की जाए तो अमर नूरी ने अपने संगीतक सफर की शुरुआत सिर्फ 13 साल की उम्र विच कीती सी। उन्होंने पंजाबी गायक दीदार संधु नाल स्टेजा ते गाउणा शुरू किया, ते बहुत छोटी उम्र विच ही अपना पहला रिकॉर्ड कढ लिया सी। उन्हां दी आवाज़ पंजाबी लोक गीतां दो गाणियां ते भंगड़ा ट्रैकां लई बहुत मशहूर है। फिल्मी सफर की गल की जाए तो गायकी के नाल नाल अमर नूरी ने कई पंजाबी फिल्मों विच भी काम किया। उन्होंने साल 1991 विच आई सुपरहिट फिल्म बदला जट्टी दा नाल अपनी अदाकारी की शुरुआत की सी। उन्हां दा व्याह पंजाब दे मशहूर गायक सरदूल सिकंदर नाल साल 1993 विच होया सी। उन्हां दे परिवार विच उन्हां दे पुत्तर हन जो संगीत दे खेतर विच ही सरगर्म हन। ए सी साडे प्यारे अमर नूरी। ते हुण प्रोग्राम नूं आपां अगे वधाउने आ, कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़दे हाँ। चिट्ठी आई है पिंड पंघाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल, एस के शर्मा ते जगतार गिल वालों। फिर चिट्ठी आई है महादेव घाट अमलेश्वर तो भेजन वाले ने डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ते रियांश ठाकुर। इन्हां तों इलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी लिखी है टाहली वाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर ते गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा। फिर चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोट तो चिट्ठी भेजी है कैप्टन सिंह, माफ करना कप्तान सिंह, सैकटरी शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा ठाकर ते हरफुल। इन्हां तों इलावा चिट्ठी भेजी है फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ने। फिर चिट्ठी आई है, बहुत दूरों चिट्ठी आई है, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो चिट्ठी आई है। भेजन वाले ने अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत ग्वानकर, प्रनीता ग्वानकर, अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो विशेली शैलेंश ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर जिन्हों प्यार नाले परी भी कहते ने, ते लाडला टुक टुक ग्वानकर। इन्हां सारिआं दी ही मिली जुली फरमाइश ते आपां तुहानूं अगला गीत सुनाउण जा रहे ने सरदूल सिकंदर दी आवाज़ विच। गीत है दिल नहीं लगदा, आओ सुनदे आं गीत।

हाँ जी दोस्तों, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चिट्ठियां मिठियां। हुने आप दिल नहीं लगदा गीत सुन रहे सी सरदूल सिकंदर दी आवाज़ विच। ते बहुत ही प्यारा गीत है, ते थोड़ी जी इनफॉर्मेशन भी थोड़े नाल सांझी कर लेंदे आ। सरदूल सिकंदर पटियाला घराने नाल संबंधित उन्हां नूं पंजाबी लोक संगीत ते पॉप दा सिकंदर भी मन्या जांदा है। उन्हां दी दमदार आवाज़ ने पंजाबी गायकी नूं विश्व पद्धर ते नवीआं बुलंदियां ते पहुँचाया। सरदूल सिकंदर दा जन्म 15 जनवरी 1961 नूं पंजाब दे फतेहगढ़ साहिब ज़िला दे पिंड खेड़ी नौद

0: बैठ गोरिए।
1: हाँ जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे सी। आप प्रोग्राम नू अगे वधाउने आ, कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ लैने आ। चिट्ठी आई है पनवाल हाजीपुर तो, चौकरी गोकुल दास, रजनीश कौंडल ते आरके कौंडल वालों। इन्हां ने हाकम सूफी की आवाज़ विच गीत सुनन की इच्छा रखी है, उड़ीकां गीत सुनना चाहते हैं। असीं ये गीत तुहानू थोड़ी ही देर च जरूर सुनावांगे। इस तों अलावा पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिखी है कमलदीप सोहन, मोहन सिंह, दीपा सेठ, गैवी ते एकम ने। इन्हां तों अलावा चिट्ठी लिखी है खाने दी ढाब मलोट तो शमशेर सिंह कौलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर ते तरनवीर सिंह ने। फिर चिट्ठी आई है मुक्तसर तो बब्बू सिंह तीमन, बलजिंदर कौर तीमन, रवनीत, निशु ते भुपिंदर ने सानू चिट्ठी लिखी है। ते आओ आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने आ, उडीकां गीत सुनदे आ हाकम सूफी दे।

हाँ जी दोस्तों, हुन समय ने सानू बंद दिता है। समय इजाजत नहीं दे रहा कि असी प्रोग्राम नू होर अगे वधाइए। मेरे वल्लों यानी कि आरजे पूनम सेठी वल्लों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल ते नमस्कार। आपां तुहानू जरूर मिलांगे अगले किसी होर रविवार नू। तद तक अपना बहुत ख्याल रखना, अपने परिवार का भी ख्याल रखना ते हमेशा चढ़दी कला विच रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल।

7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। ते टेनिस विच यूक्रेन दी एलिना स्वीतोलिना ने इटालियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां।

0: अपना अदबी रिसाला हम कलम के सभी समाइन का हम खैर मकदम करते हैं। उर्दू अदब में तनकीद का अहम मकाम है, जो अदब की कमियों को उजागर करने के साथ साथ उनकी खूबसूरती मानी अफरीनी और समाजी पसे मंजर को समझने का भी अमल है। तनकीद अदब को सही समत देती है और अदब नवीस को अपनी इजहार की सलाहियत को निखारने में भी मदद करती है। आइए इसी सिलसिले में सुनते हैं डॉक्टर इराक रजा जैदी की तकरीर। उनवान है, पंजाब में उर्दू तनकीद का इर्तिका।
1: पंजाब में उर्दू तनकीद का इर्तिका। उर्दू जबान के इर्तिका के चंद नज़रियात में से एक नज़रिया उर्दू पंजाबी से निकली है को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब से उर्दू का रिश्ता बहुत पुराना है, इसीलिए मरसिए को छोड़कर हर सिन्फ़ अदब में पंजाब का कोई ना कोई अदीब या शायर सिन्फ़ अव्वल में ज़रूर शुमार किया जाता है। सियासी उफक पर तो पंजाब टुकड़े होते होते एक मुख्तसर शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन अदब परवरी में पंजाब की वही कुदरती वसअत आज भी बाकी है जहाँ उर्दू अदब ने अंगड़ाई ली थी और हाल ही इकबाल, फैज़, मिंटू बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, पितरस, इम्तियाज़ अली ताज जैसे नुमाइंदा अदीबों को जन्म दिया था। ज़बान के इर्तका में तो ना ख़त्म होने वाली बहस अभी जारी है, लेकिन तनकीद के इर्तका में पंजाब के नाकदीन की फोकियत आशकारा है। तनकीद के लगवी मानी जाँच, परख, तमीज़, ऐसी जाँच जो अच्छे बुरे खरे खोटे में तमीज़ करे, तबसरा, नकद और नुकता चीनी के हैं। आम इस्तलाह में मुहासन व मुआयब का सही पता लगाना और फिर उस पर अपनी राय देना तनकीद कहलाता है। तनकीद या तकरीज को तनकीद समझना दुरुस्त नहीं है। दौर हाजिर में तनकीद ही हर अदब का तर्जुमान है। ये अदीब और शायर को सही रास्ता दिखाते हुए ज़िंदगी से करीब तरीन अदब लिखने में तआवुन और रहनुमाई करती है। माशरे की तकमील व तज़ईन को देखते हुए आज तनकीद ने कितने ही रास्ते मुअय्यन कर लिए हैं। पहले अदबी तनकीद का दौर रहा, फिर मार्क्सी तनकीद के ज़ेर असर तरक्की पसंद तहरीक ने इसे अवाम से और करीब तर करने की कोशिश की। फिर नफ्सियाती तनकीद ने शख्सी उलझनों, नाकामियों, जिनसी कमज़ोरियों और लाशऊर के मुताबिक गलबे को अदब की परख का ज़रिया बनाया। फ्राइड और एडलर वगैरह के बनाए हुए उसूलों से भी आम माशरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचा। आखिर में जदीदियत ने तनकीद के मेयार को परखना चाहा, मगर शारिब रुद्दौलवी की नज़र में जदीदियत अदब बराए अदब और रूमानी इंतहा पसंदी की एक शक्ल है जो इंसान और उसकी ज़िंदगी के तमाम रिश्तों की नफी करती है। वो ऐसे फ़र्द पर ज़ोर देती है जिसका वजूद किर्केगार्ड के मुताबिक मुभम और फहमो इदराक से बाहर है। इन तनकीदी नज़रियों के अलावा जमालियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद और अमली तनकीद जैसे नज़रिए भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई तनकीदी नज़रिया मुआशरे को मुकम्मल तौर पर कामयाबी की राहें तय करने और आईना दिखाने में कारगर नहीं हो पाया। नतीजे के तौर पर रिचर्ड्स का ये जुमला काफ़ी अहमियत का हामिल है, ये तजर्बात की परख और कदरों के तयन का नाम है। उर्दू अदब में तनकीद का इर्तका अदब के इर्तका के साथ साथ तज़किरों की शक्ल में दिखाई देने लगा था, लेकिन बाकायदा और उसूलों की कसौटी पर परखने का काम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुकदमे शेर व शायरी का मरहून मिन्नत है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उर्दू तनकीद के उसूल पहली बार पंजाब में मुरत्तब किए गए। ये अलग बात है कि हाल ही के मुकदमे से पहले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामे आब हयात और सखुंदान फारिस की सूरत में सामने आ चुके थे। आज़ाद यूं तो देहलवी थे, लेकिन उनके सारे कारनामे लाहौर से मंसूब हैं जो पंजाब का अहम मरकज़ रहा है। इस तरह तनकीद की दागबेल डालने का काम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उसूल व कवानीन तरतीब देने की काविश हाल ही के हिस्से में आती है, जिन्होंने हर इसनाफ़ सुखन का तनकीदी जायज़ा लिया है। हाल ही की मशहूर तनकीद और सवानी खाकों का मिला जुला इम्तिजाज यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद में वाज़ह तौर पर नजर

0: आता है। हाल ही के बाद 20वीं सदी के आगाज में ही सर शेख अब्दुल कादिर उन्हीं की रिवायत को आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने 1901 ईस्वी में मखज़न का इजरा करके अपने अफकार की तशरीह का आगाज किया। उनके तनकीदी मजामीन अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में शाया होते थे। मखज़न अदब उनकी मशहूर किताब है। इकबाल की पहली तसनीफ़ बांग दरा का दीवाचा और महरूम के मजमू कलाम गंजी मुआनी पर एक मकाला नाक़िद की तनकीदी बसारत का पता देता है। नाक़िद की सबसे बड़ी खूबी इंसाफ पसंदी है। वो बग़ैर इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत अपने काम को बड़ी खूबी से अंजाम देता है। वो नए और गैर मारूफ मगर आला तख्लीक़कारों और अदीबों से अवाम को रोशनास कराता है। ऐसे ही नाक़िदीन में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का नाम सरफहरिस्त है। वो अदबी दुनिया के एडिटर थे जिनके अदीबों को आपने अपने मकालों के ज़रिए रूशनास कराया है। उनमें कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, महेंद्र नाथ, रामानंद सागर और कन्हैया लाल कपूर जैसे अदीबों के नाम लिए जा सकते हैं। डॉक्टर वजीर आगा क्योंकि गैर मुनकसिम पंजाब में पैदा हुए और ज़िंदगी के 24 साल इसी हिंदुस्तानी पंजाब में गुजारे और उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उर्दू तनकीद को एक वसी मैदान बख्शा, लेकिन हाल ही और आज़ाद के बाद पंजाब के बावक़ार नाक़िदीन में सैयद अब्दुल्ला और महमूद शीरानी के नाम बहुत अहम हैं। सैयद अब्दुल्ला ने फ़ारसी और उर्दू के शुरा के कलाम पर जामे और मुदल्लल तनकीद की है। शुराए उर्दू के अदबी तस्करे और वली से इकबाल तक जैसी तनकीदी किताबें तहरीर की तो महमूद शीरानी ने तनकीदी मैदान में एक नई हलचल पैदा की। फ़ारसी की मशहूर किताब चहार मकाले पर उनकी तनकीदी नज़र का कोई जवाब नहीं। इसी तरह हाल ही और आज़ाद के तीसरे साथी शिबली नेमानी की किताब शेरुल अजम पर भी तनकीदी नज़र डाली, गोया तनकीद पर तनकीद करने का फ़न ईजाद किया। उनके मकालात कई जिल्दों में शाया हो चुके हैं। जोश मलसियानी का शुमार भी तनकीद निगारों में किया जाता है। शरह दीवान गालिब के अलावा जर्राह के नाम से इकबाल पर भी एक मज़मून तनकीद की शक्ल में सुपुर्द कलम किया था। माहिरीन गालिबियात में अपना मकाम मुसल्लिम करने वालों में मालिक राम का नाम सरफहरिस्त है। तलामज गालिब और नसर अबुल कलाम आज़ाद मौसूफ़ की अहम किताबें हैं। दत्तात्रेय कैफ़ी ने मंशूरात के ज़रिए इस ज़ैल में खूब नाम कमाया। इसी दौर के तनकीद निगारों में इकरामुल हक, डॉक्टर मलिक राज आनंद, असलम जयराजपुरी, मोहम्मद इकराम, अब्दुल मजीद सालिक, ताजवर नजीब आबादी, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, उमराव सिंह और गोपी चंद नारंग के नाम भी लिए जा सकते हैं। इस सदी के रुबे आखिर में पंजाब की यूनिवर्सिटियों ने तनकीद के मैदान में बहुत अहम रोल अदा किया है। ये असाज़ा खुद नाक़िद होने के साथ नाक़िदगरी का काम भी अंजाम देते हैं। इस ज़ैल में प्रोफेसर गुलवंत सिंह, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन नकवी, डॉक्टर ज़ीनतुल्ला जावेद, डॉक्टर बरकत अली, डॉक्टर अजीज़ अब्बास, डॉक्टर मोहम्मद जमील, डॉक्टर हारून अयूब, डॉक्टर तारिक फ़ायतुल्ला, डॉक्टर नाशिर नकवी, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान अंजुम वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें डॉक्टर ज़ीनतुल्ला जावेद का मकाम काफ़ी बुलंद है। आखिर में एक नाम पंजाब की सरजमीन से ऐसा सामने आया जिसने तमाम उम्र शायरी में गुजारने के बाद जब तनकीद की दुनिया में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल ने जहां अरूज के मसाइल को बड़ी खूबी के साथ हल किया वहीं तनकीद का एक नया पहलू ईजाद किया। मौसूफ की किताबों में मुसलमात फ़न, उर्दू मुहावरे, मार्का ज़ार, मंशूरात ज़ार की अहमियत और फादियत मुसल्लम है। इसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम रिसालों और अखबारों में आपके मकाले शाया होते रहते हैं। इस वक्त पंजाब में ये नाम आलमी शोहरत का हामिल है। इस तरह कहा जा सकता है कि पंजाब में तनकीद की मुकम्मल रिवायत रही है।
1: पंजाब में उर्दू तनकीद का इर्तिका, अभी आपने डॉक्टर इराक रजा जैदी की ये तकरीर सुनी। तो आइए हम कलम प्रोग्राम में अब बज़्मे सुखनवरी में जनाब विशाल खुल्लर का शेरे कलाम समात फरमाएंगे।
2: सामईन, सबसे पहले एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। मतला है, खुश लिबासी भी और फ़कीरी भी, खुश लिबासी भी और फ़कीरी भी, तू सबाती भी और नज़ीरी भी, खुश लिबासी भी और फ़कीरी भी, तू सबाती भी और नज़ीरी भी, तेरी दुनिया है देखने वाली, तेरी दुनिया है देखने वाली, नौजवानी भी और पीरी भी, तेरी दुनिया है देखने वाली, नौजवानी भी और पीरी भी, बांध रखी हैं कितनी परवाज़ें, बांध रखी हैं कितनी परवाज़ें।

रास आने लगी असीरी भी, बांध रखी हैं कितनी परवाजें, रास आने लगी असीरी भी। रम्ज में बात याद आई है, रम्ज में बात याद आई है कमानी भी और तीरी भी। रम्ज में बात याद आई है कमानी भी और तीरी भी। मेरी गजलों में बसने वाले लोग, मेरी गजलों में बसने वाले लोग, कोई फैजी है कोई मीरी भी। मेरी गजलों में बसने वाले लोग, कोई फैजी है कोई मीरी भी। तेरी बातों पे कौन कान धरे, तेरी बातों पे कौन कान धरे, खुश बयानी भी और खमीरी भी। तेरी बातों पे कौन कान धरे, खुश बयानी भी और खमीरी भी, खुश लिबासी भी और फ़कीरी भी, तू सबाती भी और नज़ीरी भी। सामिन, अब एक और गज़ल के चंद अशार समाअत फरमाएं। कफ़स कफ़स है चांद ने ही चांद ने, नहीं है क्या? कफ़स कफ़स है चांद ने ही चांद ने, नहीं है क्या? धनक धनक है रोशनी ही रोशनी, नहीं है क्या? कफ़स कफ़स है चांद ने ही चांद ने, नहीं है क्या? धनक धनक है रोशनी ही रोशनी, नहीं है क्या? बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, पुकारती पुकारती सी खामशी, नहीं है क्या? बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, पुकारती पुकारती सी खामशी, नहीं है क्या? कहाँ कहाँ हैं मंजिलें, कहाँ कहाँ हैं रास्ते, कहाँ कहाँ हैं मंजिलें, कहाँ कहाँ हैं रास्ते, ये आढ़ी तिरछी जिंदगी कमान सी, नहीं है क्या? कहाँ कहाँ हैं मंजिलें, कहाँ कहाँ हैं रास्ते, ये आढ़ी तिरछी जिंदगी कमान सी, नहीं है क्या? सवाल का जवाब भी जवाब का सवाल भी, सवाल का जवाब भी जवाब का सवाल भी, अजीब सा सवाल है ये आदमी, नहीं है क्या? अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, ये जिंदगी निखारती संवारती, नहीं है क्या? अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, ये जिंदगी निखारती संवारती, नहीं है क्या? कफस कफस है चांदनी ही चांदनी, नहीं है क्या? धनक धनक है रोशनी ही रोशनी, नहीं है क्या? सामिन, साले नौ की आमद आमद है और इस मौका पर एक नज़्म बानवान नया साल पेश खिदमत है। नया साल आया, नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, हमेशा गए साल ही की तरह हल करूं या नई कोई तरकीब ढूंढूं। नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, हमेशा गए साल ही की तरह हल करूं या नई कोई तरकीब ढूंढूं। दिसंबर करेगा बयां, दिसंबर करेगा बयां, ये गिरह कुछ खुली के नहीं, दिसंबर करेगा बयां, ये गिरह कुछ खुली के नहीं, जब मेरा ध्यान होगा नई एक पहेली की जानिब। सामिन, अब आखिर में एक दुआया गज़ल पढ़कर साले नौ को खैर मकदम कहते हैं। मुझको एक कहानी दे, मुझको एक कहानी

0: दे परियों की कोई रानी दे, मुझको एक कहानी दे परियों की कोई रानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, सूरज आग को पानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, सूरज आग को पानी दे, तेरे जैसा दिखता हो, तेरे जैसा दिखता हो, मुझको अपना सानी दे, तेरे जैसा दिखता हो, मुझको अपना सानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को, सोच की बूढ़ी नस्लों को, बच्चों सी शैतानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को, बच्चों सी शैतानी दे, दाना बढ़ते जाते हैं, दाना बढ़ते जाते हैं, इनको कुछ नादानी दे, दाना बढ़ते जाते हैं, इनको कुछ नादानी दे, लंगर हिलना भूल गए, लंगर हिलना भूल गए, झोंका एक तूफानी दे, लंगर हिलना भूल गए, झोंका एक तूफानी दे, छत पर चांद अकेला है, छत पर चांद अकेला है, बच्चे को एक नानी दे, छत पर चांद अकेला है, बच्चे को एक नानी दे, झील किनारे एक कमल, झील किनारे एक कमल, इल्म का कोई दानी दे, झील किनारे एक कमल, इल्म का कोई दानी दे, खामोशी के गुंबद को, खामोशी के गुंबद को एक सदा लाफानी दे, खामोशी के गुंबद को एक सदा लाफानी दे, खंजर बढ़ते आते हैं, खंजर बढ़ते आते हैं, इनको एक मयानी दे, खंजर बढ़ते आते हैं, इनको एक मयानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं, तेरे बंदे भूखे हैं, इनको रोटी पानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं, इनको रोटी पानी दे, भटकी रूहों को दाता, भटकी रूहों को दाता, दुनिया आनी जानी दे, भटकी रूहों को दाता, दुनिया आनी जानी दे, मेरी गजलों को मौला, मेरी गजलों को मौला, थोड़ी चुस्त बयानी दे, मेरी गजलों को मौला, थोड़ी चुस्त बयानी दे, तेरा नौकर दास फकीर मखता है, तेरा नौकर दास फकीर खुल्लर को सुल्तानी दे, तेरा नौकर दास फकीर खुल्लर को सुल्तानी दे, मुझको एक कहानी दे परियों की कोई रानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, सूरज आग को पानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं इनको रोटी पानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को बच्चों सी शैतानी दे, छत पर चांद अकेला है, बच्चे को एक नानी दे।
1: स्माइल प्रोग्राम हम कलम समात फरमा रहे थे। अब प्रोग्राम के आखिर में पेश एक खिदमत है, एक अफसाना जिसका उन्वान है तब्दीले। अफसाना निगार हैं मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी।
2: पानी का पाइप खुला था और पूरी सड़क को सैराब कर रहा था। भीगी हुई गाड़ी देखकर मालूम होता था कि कोई पाइप खुला छोड़कर अंदर चला गया है। मास्टर दीपक कुमार ये देखकर रुक गए और गाड़ी के मालिक का इंतज़ार करने लगे। घर के अंदर से प्रॉपर्टी डीलर सिंगला बड़े आराम से चलता हुआ बाहर आया, दाएं हाथ से पाइप उठाकर गाड़ी धोने लगा। दीपक कुमार उसे देखते रहे मगर सिंगला ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। आखिर मास्टर दीपक बोल उठे, सिंगला साहब, आप गाड़ी धो रहे हैं या गली में सैलाब लाने के मूड में हैं? गाड़ी तो दो तीन बाल्टियों से भी धोई जा सकती है, आप इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सिंगला खामोशी से

बाईं हाथ में पकड़ा फोम गाड़ी पर फेरता रहा। थोड़ी देर बाद मास्टर दीपक ने फिर सवाल किया, सिंगला साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सिंगला मुंहफट आदमी थे, थोड़ा गुस्सा से बोले, मेरे यहाँ समस्तीवाल लगा हुआ है जो बिजली से चलता है, और बिजली का बिल मैं अपनी जेब से देता हूँ। आप बताएं, आपको क्या तकलीफ है? मास्टर दीपक ने हंसकर कहा, बिजली का बिल बेशक आप देते हैं, आपका घर है, मगर पानी पर हम सब का हक है। भाई साहब, पानी की इंपॉर्टेंस समझिए। आज हमारे कई प्रदेश सूखे की लपेट में आ चुके हैं, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये पानी अमृत है, हम हैं तो इसकी वजह से, भगवान ना करे कि पंजाब की हालत लातूर जैसी बने, इसलिए जितना हो सके पानी बचाइए और अपने आप पर तरस खाइए। सिंगला उखड़ कर बोला, बढ़ाया पंजाब का ठेकेदार, चल चल अपना रास्ता नाप, ये भाषण स्कूल के बच्चों को जाकर देना। मास्टर दीपक फिर हंसा और बोला, आप तो बुरा मान गए, जब हम बड़े पानी का इस्तेमाल सीखेंगे तभी छोटे बच्चों को मालूम होगा ना। सिंगला हाथ रोककर बोला, ओ मास्टर जी, तू मास्टर है, मास्टर बन के रह, नेता ना बन, चल फुट यहां से, वरना। मास्टर दीपक वरना का मतलब समझ गए, वैसे भी वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, गर्दन झटक कर मुस्कुराते हुए चल दिए। सिंगला उसी स्पीड से पानी बहाता हुआ बुड़बड़ाया, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। सिंगला का सारा दिन मूड खराब रहा। बीमार बीवी को लेकर अस्पताल गया तो उन्होंने ढेर सारे टेस्ट लिख दिए, खून के सैंपल देकर वो रिपोर्टों के चक्करों में उलझ गया, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर। दिन ढले तक उसने काम मुकम्मल कर लिया। आज डिनर उसने एक पार्टी के साथ होटल में लेना था, उसके लिए तैयार होते होते रात के 8 बज चुके थे। काम वाली बाई को ज़रूरी हदायतें देकर सिंगला बिजनेस मीटिंग के लिए चला गया। पार्टी देर तक चली, वो थका मांदा आया और लड़खड़ाता हुआ अपने बेडरूम में जाकर बगैर कपड़े बदले एसी ऑन करके सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे, वो पसीने में भीग चुका था, मारे प्यास के उसकी जबान लकड़ी हुआ चाहती थी, उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। उसने आंखें खोली, घुप अंधेरा था, एसी बंद पड़ा था, छत का पंखा साकत था। उसने हाथ बढ़ाकर बेड के सरहाने पड़ी तपाई पर रखी बोतल उठाई, बोतल में पानी बहुत ही कम था। उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और बोतल मुंह में उंडेल ली। मुश्किल से एक घूंट पानी से वो अपना गला तर कर सका। खाली बोतल फेंक कर वो काम वाली बाई को दिल ही दिल में कोसने लगा। एक घूंट पानी ने प्यास और बढ़ा दी थी। सरहाने से मोबाइल उठाकर उसकी हल्की हल्की रोशनी के सहारे चलता हुआ वो इन्वर्टर के पास गया तो उसे याद आया कि 2 दिन पहले ही उसकी बीवी ने उसे इन्वर्टर ख़राब होने की इतला दी थी। उसे फुर्सत ही नहीं मिली कि उसे उठाकर मैकेनिक के पास ले जाता। चारों नाचार गले को सहलाता हुआ वह प्यास बुझाने की गरज से फ्रिज की तरफ लपका। उसे सख्त मायूसी हुई, बोतलें खाली थीं और बर्फ़ के डोंगे वो भी खाली, उसका मुँह चिड़ा रहे थे, मारे प्यास के उसका दम घुट रहा था। बिजली होती तो वो समस्ती वेल से पानी हासिल कर लेता। टैंकी के पानी का तसव्वुर करके उसे उबकाई आने लगी। बरसों से टैंकी की सफाई नहीं हुई थी, ना ही उसमें लाल दवाही डाली गई थी। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा वो सोच रहा था कि वो टैंकी का पानी पिए या ना पिए। उसका मुंह सूख रहा था, उसने जबान

होठों पर फेरी, कुछ सोचकर मोबाइल फोन की रोशनी में बाथरूम का दरवाजा खोला और पानी की टूंटिया अपने होठों में ले ली और गटागट पानी पीने लगा। जी भर कर पानी पीने के बाद वो बाथरूम से निकला और अपने बेड पर फिर से ढेर हो गया। ख्वाब में भी वो पानी की तलाश में भटकता रहा। सुबह को जब जागा तो उसका जिस्म टूट रहा था, उसके पेट में सख्त दर्द महसूस हो रहा था। प्यास की शिद्दत और टैंकी के पानी को पीने की बात याद करके वो कांप उठा। उसे आज बीवी को रिपोर्टों के साथ अस्पताल ले जाना था। ज़रूरियात से फारिग होकर

0: जब जागा तो उसका जिस्म टूट रहा था, उसके पेट में सख्त दर्द महसूस हो रहा था। प्यास की शिद्दत और टैंकी के पानी को पीने की बात याद करके वो कांप उठा। उसे आज बीवी को रिपोर्टों के साथ अस्पताल ले जाना था। ज़रूरियात से फारिग होकर उसने चाय पी, लेकिन दर्द उसके पेट में मुतवातर वैसे ही हो रहा था। गैराज से गाड़ी निकालकर बाहर खड़ी करके वो बाल्टी और मग लेकर गाड़ी धोने लगा। मास्टर दीपक अपने मुकर्रर वक्त पर वहां से गर्दन झुकाए खामोशी से गुजरे तो सिंगला से रहा ना गया और मुस्कुराता हुआ ताजीम से बोला, मास्टर जी नमस्कार। मास्टर दीपक ने सिंगला की तरफ देखा, जो मग से पानी गाड़ी पर फेंक कर दूसरे हाथ से उसको मसल रहे थे। नमस्ते सिंगला साहब, वो मुस्कुराकर जवाब में बोले। सिंगला उनको देखकर बोला, मास्टर जी वाकई पानी हमारे लिए अमृत ही है, हमें इसकी महत्वता समझनी चाहिए। ये तब्दीली देखकर मास्टर दीपक हैरान हो रहे थे।
1: समाइन, अभी आपने जनाब मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी का अफसाना सुना, जिसका उन्वान था तब्दीली। अब इसके साथ ही प्रोग्राम हम कलम अपने अंजाम पे पहुंचता है। अगले माह की मुलाकात के वायदे के साथ खुदा हाफिज।

नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड्डे पाग गुरमुख हर लेना। ए फरमान चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारित है। आप जी फरमाउंदे ने कि हे सज्जन मित्रो, उस प्रभु दा नाम जपो। उस प्रभु दे नाम तो बिना होर कोई ऐसा नहीं है जो सहाई हो सके। पर प्रभु दा नाम वड्या पागा नाल ही जपया जा सकता है। इस वास्ते अकाल पुरख दी पूरन दृष्टि दी लोड़ पासदी है। राग तनासरी विच साहिब श्री गुरु रामदास जी अपने मन नू संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे ने, जप मन सत नाम सदा सत नाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना। सरवण करदे आं भाई चरणजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। आप जी सर्वण कर रहे सो भाई चरणजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द गुर से।

0: आ ते पगत कमाई, तब एह मानस दे ही पाई। होर भी फरमान है, पजौ गोबिंद पूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। ए फरमान भगत कबीर जी द्वारा उचारित है, जो प्रभु दी भगति नूं उत्तम साधन मनदे हन उस अकाल पुरख नाल अपेता दे लई। आप जी अनुसार भगति तो बिना जीवन व्यर्थ है, किसे भी कम दा नहीं है। सत पुरशां दी संगत विच जाके प्रभु दी उस्तत कीत्या, उस सच्चे दी आराधना कीत्या ही उस दे नाल मिलाप संभव है, वरना ऐसा नामुमकिन है, असंभव है। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दी बाणी विच प्रभु भगति दी, प्रेमा भगति दी, प्रभु दी भजन बंदगी दी महिमा बयान कीती गई है। सुनदे हां भुपिंदर कौर होरां पासों वार्ता, भगत बिन बिरथे जन्म गयो।
1: गुरबाणी विच प्रभु सिमरन करन वाले नू भगत दी पदवी मिली है। सास गिरास मालक दाते नू याद रखना, नाम सिमरन दे आहर विच रहना, गुरु तो बलिहारे जाना, बंदगीहीन मनुखां तो दूरी रखनी, भगत दे सहज चिन्ह हन। भगत कबीर जी गौड़ी राग दे एक शब्द विच बहुत सुंदर दृष्टांत दे के मन नू समझांदे हन कि प्रभु जी दी भगती तो बिना मनुखा जन्म व्यर्थ ही जांदा है। भगत जी समझांदे हन कि जिवें बांदर कुजे च हथ पा के छोलियां दी मुठ भर लैंदा है, ते लोभ वस हथ बाहर नहीं कढ़दा ते काबू आ जांदा है, ऐन इसे तरह जीव लोभ वस हो माया दे मंदरां विच जकड़िया जांदा है। भगत कबीर जी फरमाउंदे हन, भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहो। भगति भी हुणे जीवन दी निरार्थकता नूं सरल उदाहरणा राहीं स्पष्ट कीता है। जंगल दे विच खिड़े फुल्लां दी सुगंधी नालों बाग बगीचे दे फुल आले दुआले नूं सुहावना बनाउंदे हन। प्रभु जी दी बंदगी रूप सुगंधी तो बिना जीव अनेक जूना विच भटकते रहते हैं, ते मुड़ मुड़ काल वस पेंदे रहते हैं। नाम दी सुगंधी तो बिना जगत फुलवाड़ी दा ए जीव फुल किसे अर्थ नहीं। दुनियावी रसा कसा विच तां हरी विसरदा है, ते सदा खुआरी दा कारण बनदा है। इसलिए भगत कबीर जी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दी प्रेरणा करदे हन। वडहंस दी वार नाल दर्ज एक श्लोक विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी सदीवी सच्चे गुरु दी प्रेम भगति तो बिना जीवन नू दुखां दा वास दसदे हन, क्योंकि दूजे चाह ते प्यार होमे नू वधाउंदे हन ते नाम प्यार नू मिटाउंदे हन। इउं भगति वी हुणा जीवन मायक रुझेवियां ताईं सीमत हो विकारां नू जीवन विच लिया कई जन्मां दी व्यर्थता दा कारण बनदा है। गुरु जी फुरमाउंदे हन, बिन सतगुर सेवे जगत मुआ, बिरथा जन्म गवाए दूजे पाए अत दुख लगा, मर जम्मै आवै जाए विस्टा अंदर वास है, फिर जूनी आए नानक बिन नावै जम मारसी अंत गया पछताए। गुरबाणी विच भगती वी हुने जीवन दी सख्त शब्दां विच निंदा कीती गई है। इस जीवन दी व्यर्थता नू विभिन्न उदाहरणा प्रसंगा चेहना ते प्रतीकां राहीं पेश कीता गया है। असल विच ए जुगत प्रेरणा दा ही रूप है। भगत कबीर जी तां बंदगीहीन मनुख दी मां नू वी बुरा आखदे हन ते भगत दी कुत्ती नू वी सलाउंदे हन। गुरबाणी अनुसार प्रभु भगति जीवन दा उत्तम उपयोग करन वाली दात है। विकारां नाल भरे संसार समुंदर तों भगति ही पार लंघा सकदी है। गुरबाणी इस भेद नू स्पष्ट कर दिंदी है कि भगत बिना संसे ते भरमां दी निवृत्ति नहीं होनी।

0: ने सब कोई
1: भगत बिन बिरथे जन्म गयो। ए वार्ता सुना रहे सन भुपिंदर कौर। आओ हुण सरवण करदे हां भगत कबीर जी द्वारा गौड़ी राग विच उचारित इस रचना दा गायन, जिस दी रहाओ दी पंक्ति है, भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही न सच रहेओ। इस रचना दा गायन कीता है भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

बिन बिरथे जन्म गयो, साद संगत भगवान भजन बिन कही न सच रहो। भगत कबीर जी द्वारा उचारित इस रचना का गायन किया सी भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: बाजी करदियां पंजाब किंग्स सामने जित लई 223 दौड़ा दा टीचा रखिया है। ताज़ा खबरां मिलन समय तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवरां विच 5 विकटां दे नुकसान ते 93 दौड़ां बना लियां सन। एक होर मैच विच दिल्ली विच शामी 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने हुण एक दिन विच 256.4 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मंग नूं सफलता नाल पूरा कर लिया है। पंजाब विच भी झोने दी रुत दौरान बिजली की मंग ज्यादा होने का अनुमान। गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड मामले के संबंध में 3 व्यक्ति गिरफ्तार। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने सहकार भारती पंजाब जागरूकता संगोष्ठी विच मुख मेहमान वजो शिरकत की। उन्होंने सहकारिता अंदोलन नूं पिंडां दे विकास ते समाजिक मजबूती का अहम आधार करार दिता। ते पंजाब विच 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं पर खरड़ दीआं चोणां मुलतवी करन संबंधी निर्देश जारी। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हां जी, तेजा सिंह जी, जेड़ा सिलसिला अपना 90 साल आकाशवाणी दे नाल
4: जी,
3: इस सिलसिले दे विच जेड़े भी लोग आकाशवाणी दे नाल जुड़े हुंदे हैं किसी भी पक्ष तो
4: जी,
3: चाहे वह स्रोता वर्ग है, चाहे वह पेशकारी दे नाल जुड़िया, किसी ना किसी तरह का आकाशवाणी नाल संबंध रखते हैं, तो वह लोग आके अपने दिल दीयां गल्लां जज्बात अपने सांझे करते हैं। अश्विनी कुमार हुरी ने अज्ज दे सिलसिले च इन्हां नाल गल्लां बातां होईयां सांझियां करदे आपां
4: जी। ठीक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20

0: मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया।
1: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7:30 बज रहे हैं। आउन सुनते हैं पंजाबी।

0: जनली पताए सहायक निदेशक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7:30 बज रहे ने, आउन सुनदे हां पंजाबी दीआं खबरां।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तीजे पड़ा ते नीदरलैंड्स के 2 दिनों दौरे तो बाद स्वीडन के गोथनबर्ग पहुँच गए ने। केंद्रीय नवी ते नवियोणयोग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 GW बिजली की मांग सफलतापूर्वक पूरा किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन की अगवाई वाली नवी केरलम सरकार कल तिरुवनंतपुरम में सहु चुकेगी। ईरान ने ऐलान किया कि फौजी साजो समान ले जाने वाले दुश्मन के जहाजों को हॉर्मुस जलमार्ग तो लंघन की आग्या नहीं देगा। तो IPL क्रिकेट में अज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 दौड़ों नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तीजे पड़ा नीदरलैंड्स के 2 दिन दौरे तो बाद अज स्वीडन के गोथनबर्ग पहुँच गए हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के तीजे पड़ा से नीदरलैंड्स के दो दिन दौरे तो बाद स्वीडन के गोथनबर्ग पहुँच गए ने। नवी ते नवयौन योग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन की अगवाई वाली नवी केरलम सरकार कल तिरुवनंतपुरम में सहु चुकेगी। ईरान ने ऐलान किया कि फौजी साजो समान ले जाने वाले दुश्मन के जहाजों को हॉर्मुज जलमार्ग तो लंघन की आग्या नहीं देगा। इस ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे। साडा अगला बुलेटिन पढ़ के सवेरे 8:30 पर होगा। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7:42 हो चुके ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम वगदे पानी। आज दे इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे राजकुमार दा पंजाबी कविता पाठ।
3: मेरी कविता दा अनुवान है बसंत। आद जुगाद तो पा रहे रौला, आद जुगाद तो पा रहे रौला, बसंत रुत्ते कटी पतंग देख ते फिर मगर भजदें फड़न खातर, जे ओ भी हाथ ना आई ता तमाशा करदे मदारी वांग खब्बे हाथ नू घुमा घुमा कट्ठी करदे डोर। तमाशा करदे मदारी वांग खब्बे हाथ नू घुमा घुमा कट्ठी करदे डोर, बड़ा तरस आउंदा तेरे ते क्यों तेरा बदन संवेदनहीन हो गया। अपना मुल ना पवा, अपना मुल ना पवा, जरा सोच बेमुल्ला ए तू। दिन महीने साल सदियां गुजर गईयां, दिन महीने साल सदियां गुजर गईयां, कुछ अपने पूर्वजां तो ही सिख, कुछ अपने पूर्वजां तो ही सिख। बीते दा विश्लेषण कर चक्करवात दे वहना चों बाहर निकल, लंघ जा खारे समुंदर गाह दे तपदे मारूथल, बदल दे समाजक समीकरण लिया अपने बेहड़े विच बसंत बहार, खिड़ा अपने आंगन विच रात दी।

0: आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तुसी सुन रहे सी पंकज उदास दी गाई ए गज़ल। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: उपराला है। समय समय पर खबरें सुनने को मिलती हैं, रेडियो में जो भी जानकारी सुनने को मिलती है बिल्कुल सही होती है। सोशल मीडिया में तो लूट खसूट बहुत हो रही है, इससे हर इंसान को बचकर रहना चाहिए। कार्यक्रम आपके बुलंदियों को छू रहे हैं।
1: पुरशोत्तम जी, तुसी सानू भद्रवाह तो खत लिखया है और थोड़े खत भी सानू लगातार मिलते रहते हैं। तुसी प्रोग्राम दे विच खत दे विच साडे वक्ख वक्ख प्रोग्रामां दे बारे विच अपनी राय लिख के भेजी है और तुहानू साडे प्रोग्राम पसंद आउंदे ने। इस दे नाल तुसी लिखया है कि जिहड़े लोगों को जागरूक करने वास्ते विज्ञापन सुनाए जाते हैं वह भी आकाशवाणी का बहुत वड्डा उपराला। साडी कोशिश यही होंदी है कि हर विषय के उपर लोगों को जागरूक किया जाए। जिस तरह पिछे जी असी
0: जी
1: कंपेन चलाई सी कि जी साइबर ठगी है, ये भी बहुत सारी घटनावां सुनने को मिलती सन,
0: जी
1: तो ये उन बारे ही लोगों को जागरूक करने वास्ते असी स्पैशल कंपेन चलाई और जोड़े वो माहर ने उन्होंने बुला के इतने दफ्तर के स्टूडियो के बुला के उन्होंने इंटरव्यू उन्होंने भेंट वार्तावान सुनाईया गई। यह भी दस्या गया कि आम जनता आम
0: जी
1: लोग इस ठगी तो किवें बच सकते हैं।
0: और बहुत सारे सोन जी विज्ञापन भी चलाए गए
1: जी बहुत
0: साडे वालों,
1: जी
0: साडे
1: जी जी
0: आकाशवाणी वालों,
1: जी जी जी
0: ताकि असी लोगों नू दस सकीए कि किस तरह दे क्राइम जड़े ने उन्हां
1: हाँ,
0: नाल हो सकते ने।
1: और किस तरह के नवे नवे रूप जिहड़े ठग लोग ने
0: हाँ
1: वो किस तरह नवे नवे ठगी दे तरीके अपना के
0: जी,
1: लोगों नू अपने जाल दे विच फसांदे ने।
0: और असी ये भी गाहे बगाहे दसदे रहे कि जे ठगी हो भी गई है
1: जी जी
0: तो तुसी केड़ी हेल्पलाइन ते जाके तुसी मदद
1: शिकायत
0: लै
1: दर्ज करनी
0: सकते हो,
1: है, शिकायत
0: शिकायत
1: दर्ज
0: दर्ज कर
1: करनी है।
0: सकते
1: जी
0: हो।
1: तो बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी साडे प्रोग्राम पसंद करदे हो। सानू उम्मीद है पुरशोत्तम जी कि अग्गों वास्ते भी साडे प्रोग्रामां दे नाल तुसी इसे तरह जुड़े रहोगे और सानू अपने खत इसे तरह लिख के भेजते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: पिंड हीरावाली, जिला फाजिलका तो सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा,
1: जी
0: सरवन रिणवा, हजारी लाल शर्मा
1: जी
0: कहिंदे, प्यार भरी सत श्री अकाल। पिछला प्रोग्राम सुनिया जिस विच मेरा भी ईमेल शामिल किया गया। 11 तरीक नूं शामी 5 तो 6 बजे युवाणी विच आरजे नेहा ते आरजे दीक्षा जी ने कहिंदे बहुत ही वधिया कार्यक्रम पेश किया। फैमिली नंबर 1 भी सुनिया, बहुत वधिया लग्या। 11 तरीक नूं राती 10:02 ते कवि सभा सुनी जिस विच अमरजीत कौंके, हरमीत विद्यार्थी, बलविंदर भट्टी ते परमजीत जी ने मज़ा ही लिया दिता।
1: वाह
0: 12 तरीक नूं राती खेड संसार प्रोग्राम विच बीरेंद्र जी ने अर्जुन अवार्ड ट्रिपल जंप खिडारी अरपिंदर सिंह जी नाल कीती गलबात, बहुत ही वधिया लगी। 13 तरीक नूं 12:05 ते वसदे वेड़े प्रोग्राम दे तहत अरविंदर कौर धालीवाल कोलों कहानी सुनी, मैं छुट्टी ते जा रही हां, बहुत ही वधिया लगी। 14 तरीक नूं 12:05 ते वसदे वेड़े प्रोग्राम विच डॉक्टर तरुण अग्रवाल जी दी मेडिकल स्पैशलिस्ट तों दिल दी धड़कन बारे जानकारी दित्ती गई, बहुत वधिया सी। पर कहिंदे इक गल असी कह दिए कि साडे दिल दी धड़कन तां हमेशा ही आकाशवाणी जलंधर है।
1: वाह, इन्ना मान देने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी सुभाष गुदारा जी।
0: जी
1: तुसी देखो तरीक वाइज साडे प्रोग्राम सुने ने और उन्हां दी तारीफ लिख के सानू भेजी है। हर तरह के प्रोग्राम तुसी सुन दियो,
0: जी
1: खेड संसार प्रोग्राम भी तुसी सुनिया, अमरजीत कौंके ते हरमीत विद्यार्थी, बलविंदर भट्टी ते परमजीत जी वल्लों जिहड़ी कवि सभा पेश की गई 11 तारीख में वह भी तुहानू पसंद आई। युववाणी प्रोग्राम भी तुसी सुनदे हो जिहड़ा कि साडा FM रेनबो दे उपर 5 बजे तो लैके 6 बजे तक हर रोज़ प्रोग्राम शाम को पेश किया जाता है, वह भी तुसी सुनिया, उहदे बारे भी तुसी अपनी राय लिख के भेजी है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी और सानू उम्मीद है कि तुसी इसे तरह साडे प्रोग्रामां दे नाल जुड़े रहोगे और साडी तक अपनी राय इसे तरह लिख के भेजते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, ते देखो बहुत सारियां चिट्ठियां दा जिहड़ा साडे कोल सिलसिला सी, काफ़ी चिट्ठियां सी अज ते
1: जी
0: साडे
1: जी
0: कोल,
1: जी
0: और
1: जी जी
0: बहुत सारी चिट्ठियां असीं पढ़ भी लई हैं
1: जी
0: ते इक चिट्ठी साडे कोल रह गई है।
1: ये की कहिंदे ने जी,
0: जी
1: ये लिखण वाले ने जी बलबीर सिंह, पंजाब पुलिस दे मुलाजम ने और ये लिखते ने, मैं तुहाडे तकरीबन सारे प्रोग्राम सुनदा हाँ, मैं शनिवार तो ऐतवार ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹਾਂਡਾ, ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁੜੀਆ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਕੀ ਖੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ

0: कभी तो हंसाए।
1: सुनते अगला गीत, आशा भोसले ते बप्पी लहरी दी आवाज़ां च, फिल्म नमक हलाल तों।

0: कभी तो हंसाए।
1: सुनते अगला गीत, आशा भोसले ते बप्पी लहरी दी आवाज़ां च, फिल्म नमक हलाल तों।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधु

0: डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर

ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता V.D. सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। सवेर दी निम्मी निम्मी खुशबू आ रही है। सवेर दा मतलब दोधियां दे साइकलां दियां टल्लियां, पर इस सब तो चाक दी सवेर दी सुनहरी किरण जिमें जिमें कंध तो थल्ले आ डिगदी है। आज

सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। सवेर दी निम्मी निम्मी खुशबू आ रही है। सवेर दा मतलब दोधियां दे साइकलां दियां टल्लियां, पर इस सब तो चाक दी सवेर दी सुनहरी किरण जिमें जिमें कंध तो थल्ले आ डिगदी है। अज पर ओह जी सवेर नहीं है, आसमान विच बदल ने। देखा रेडियो दी सवेर दी सभा शुरू होई कि नहीं, अजे तां इह टोन ही लगी हुई है। हुण वजूगी सिग्नेचर ट्यून।

0: आहा, सच्ची सवेर हो गई। ए सिग्नेचर ट्यून रोजाना ही बड़ी चंगी लगती है। हाथ च दुद्ध डोलू ते मोडे दे बैग विच एक छोटा जिहा ट्रांजिस्टर लैके हर रोज सवेरे निकल जांदा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। अज वीरवार शक समत 1938 दे वैसाख दी 8 तद अनुसार ईस्वी सन 2016 दी अप्रैल महीने दी 28 तारीख। इस वेले सवेर दे 5:56 ते 47 सेकंड होए ने।
0: ओए ये टाइम इंद्रेश दी आवाज है,
1: सरबत दे
0: परदे। क्यों ओए, की हाल है तेरा?
1: शुरू कर रहे।
0: मैं सुनिया तू कुड़ी दा ब्याह भी कर दिता ते मैनू सद्दिया भी नहीं। किन्ने दिन तुसी लोका ने मेरे नाल काम कीता है, तू अपने जग्गू भाव नूं ही भुल गया। चल छड, तेरे नाल गिला शिकवा फेर करांगे। अच्छा एक गल दस, तू अक्सर मॉर्निंग ट्रांसमिशन विच तेरी आवाज़ नहीं सुनाई दिंदी। लगता है अजकल खूब नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं। करे सब ठीक है ना? किते भरजाई दे नाल कोई पंगा तो नहीं लै बैठा? दूजे चैनल ते तां शास्त्री संगीत आ रहा है। ये आर्टिस्ट कौन है? किहड़ा घराना है? बनारसी घराना है या किराना घराना? पर अच्छा लग रहा, बारिश की आवाज नाले तुन भी बहुत चंगी लग रही है। ये तो मल्हार है।
2: हुने तुसी रिमझिमी बरसात दी सवेर दे मौके ते सितार ते राग मियां की मल्हार सुन रहे सी।
0: वाह, मेरे कन्ना ने ठीक ही सुनिया, पर अनाउंसमेंट विच एकदम फ्रेश आवाज सुनाई दिती है। कैजुअल है या फिर कोई नवा अनाउंसर? तू कोई बिल्कुल नवा जापता है। वैसे अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया कर रहा सी। बुरा ना मन्नी मेरी गल दा, शायद नवी नवी नौकरी लगी है।
3: हाँ जी,
0: बहुत खुशी हुई बई। मेरा नाम जगमोहन है, शायद तुसी पहचान लिया होवेगा।
3: जगमोहन? ओ हाँ हाँ, तुसी ओ वेटरन ड्यूटी ऑफिसर जगमोहन, तुहाडे बारे च बहुत कुछ सुनिया। 34 साल तुसी नौकरी की थी, ते काफी साल हो गए तुहानू रिटायर होए। स्टूडियो नूं तुसी मंदर आखदे सो ना?
0: जी जी
3: असीं तां इह वी सुनिया कि तुसीं फिल्लर भी प्रोग्राम नाल मिलदा जुलदा ही चुनदे सो।
0: जी जी,
3: एक बार ठुमरी भैरवी तो बाद गिटार दा फिल्लर वजन लगा तो तुसीं भज के दूसरा फिल्लर लैके स्टूडियो वल जा रहे सी कि ठोकर खा के गिर गए।
0: जी,
3: तुहाडे पैर दी हड्डी टुट गई।
0: हाँ जी,
3: तुहानू हॉस्पिटल लैके जाना पिया।
0: जी जी जी

आ डॉक्टर साहब एक एक एक बेनती मैं हूँ एक बहुत अर्जेंट फोन करना है, प्लीज कृपा करके एक फोन दबर बंद कर दियो। दरअसल दरअसल 8:30 बजे एक ग्रामो

सॉरी पर शायद मेरे बोलने का तरीका गलत सी। सॉरी। लंबा कॉरिडोर, दोहां पासे दीवार ते लगियां नेम प्लेट्स, अनजाने अनपछाते ना, कोई भी नहीं जड़ा जड़ा हस के प्यार नाल कहंदा, कैसे हो जगमोहन पा, की हाल है थोड़ा जगमोहन सर।

सरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे।

0: आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगूबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गौरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a flute recital by renowned flautist Sri Vivek Sonar. Born and raised in Chalaskal, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Varkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin, and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Goa,

गुंजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला एकेडमी म्यूजिक फेस्टिवल. विवेक हैज रिसीव्ड मेनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स. टू नेम सम, आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट फॉर इंडियन क्लासिकल फ्लूट, ठाई रत्न अवार्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुरमणि टाइटल फ्रॉम सुर श्रृंगार संसद मुंबई, नेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वृंदावन गुरुकुल स्कॉलरशिप. टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड दुत गत सेट टू तीन ताल. ही विल बी अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अदिया.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।

0: स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his 2-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his

0: जी दोस्त, तेरे बिना ना गुजारा भी, बिल्कुल जी, ये तेरे बिना गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, और तुहाडे सारयां तों बिना ये प्रोग्राम दा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे करके तुसीं इस प्रोग्राम च पहुंच जाना है टाइम कढ के, क्योंकि ये प्रोग्राम दा वैसे तो वक्त बहुत ज़्यादा 1 बजे तक है। तुसीं आराम नाल प्रोग्राम सुनो भी और इस प्रोग्राम दे विच अपनी शिरकत करो भी। 0181 43 171 नंबर डायल करके। लो जी दोस्त आ गए ने, देखिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: हेलो साहब, सर मैं नमस्कार,
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं डेरा कॉलोनी फाइल का धर्मा सागर बोल रहा हूँ।
0: जी जी धर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, तुहाडा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे, बहुत वधिया चल रहा।
0: क्या बात है जी, प्रोग्राम नु तुसीं पहले कॉलर बने हो, तो ये ना कहो कि हुण मेरी कॉल लग गई है तो हुण मैं बाकियां दी कॉल नहीं सुननी। नींद नहीं आती है तो फिर कोई गल
1: नहीं।
0: अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: नरेंद्र जी का सुना दो सर जी,
0: केड़ा गीत सुनना चाहते हो? जे मुंडिया तू मैनू नचदी वेखना। लो जी लै दे सोना, है चांदी दा गड़वा लै दे, है इदां दा गीत है। लो जी सुनानी है तुहानू, शुक्रिया जी कॉल करन दे लई।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात तुसी 1 बजे तक सुनते रहोगे और तुसी इस प्रोग्राम दे विच पहुंच सकते हो 0181-2342-171 नंबर डायल करके। और जिहड़े दोस्त सानू व्हाट्सएप मैसेज करना चाहुंदे ने 94-655-3607-77 इस नंबर दे अपने तुसी व्हाट्सएप मैसेज भेज के अपनी पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो प्रोग्राम सौगात दे विच। लो जी, कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी, राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत।
0: राजू जी, अज प्रोग्राम सौगात दे भी तुसी पहुंचे हो, ते ये दसो कि अज पूरा दिन किवें बताया फिर?
1: दिन बस सर जी, बाहर बैठे रहे, काम दे दरख्त दे थले। फोन आ गया, काम दे चले गए।
0: क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मेहनत जड़ियां उना करके ही सारा कुछ होंदा है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: इंसान मेहनत करे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है।
1: देखो जी, असि तो फिर भी छावा च बैठ जाते, जेडे सारा दिन धुप च दिहाड़ी वाले काम करते हैं बंदे बेचारे।
0: उही तो गल है ना जी। वैसे तो हर तरह का जो काम है वो मेहनत के नाल ही है, चाहे कोई अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे।
1: परमात्मा भी मदद करता जी, मेहनत करने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ते बहुत वधिया जी। राजू जी, अज फिर
1: मेहनत
0: केड़ी?
1: तो सानू घबराना नहीं चाहिए
0: जी। नहीं घबराना चाहिए, जिन्नी ज्यादा मेहनत करोगे ना परमात्मा उन्ना ही दिंदा है फिर। अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो राजू जी?
1: जीता जैलदार दा गीत सुनना सर।
0: लो जी, सुनाने हैं तुहानू जीता जैलदार दी आवाज दे विच। शुक्रिया जी राजू जी कॉल करन दे लई। लो जी, कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल कर लैने हैं। ये साढ़े दोस्त ने जी गंज डुंडवारा तो है जी, शमसूल कुमार, शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने जिन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। ये साढ़े दोस्त आए ने जी, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीएम जैन, इन्होंने सानू सरदना मेरठ तो व्हाट्सएप मैसेज किया। साढ़े दोस्त पहुंचे ने जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, तो बादशाह मुलानी, इन्होंने सानू तालुका पंडरपुर तो व्हाट्सएप मैसेज किया। लो जी, इन्होंने सारे की फरमाइश से सुनते हैं जीता जैलदार की आवाज़ के गीत।

जी दोस्तों, बूहे जैलदार मैं ना बचदी। गल सही है जी, गर्मी का बुखार जदों हो जाता ना फिर कितों बचना, और औखा हो जाता बचना फिर जो तो जैलदार साहब अगे आ जाए, फिर तो वाकई जी औखा हो ही जाना है। प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, सौगात प्रोग्राम से दोस्तों तुसी भी पहुँच सकते हो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? रजवंत जी बोल रहे हो? हैं जी, दोबारा दसो, गुरदासपुर तो केड़े साहब बोल रहे ने? चलो स्वागत स्वागत है जी प्रोग्राम च। केड़ा गीत लेके आए हो अज फरमाइश च? रणजीत बाबा की आवाज दे फिर गीत सुनाने हैं तुहानू। शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। लो जी साढ़े दोस्त जिन्होंने सानू फरमाइश भेजी इसे गीत को सुनने के लिए, मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन्होंने सानू फरमाइश भेजी सी। और कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, तो इन्होंने परिवार के होर बहुत सारे दोस्त मित्र ने जिन्होंने सानू मैसेज भेजे वट्सअप के राही। तो अगली फरमाइश है जी साढ़े को आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, तो निवान शर्मा उन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया। तो ये साढ़े दोस्त आए ने जी जिन्होंने बड़े ही देर बाद साढ़े को मैसेज भेजे। सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा दे इन्हां दे परिवार दे बहुत सारे दोस्त। लो सुनते हैं जी इन्हां सब दी फरमाइश से रणजीत बावा दी आवाज़ च ये खूबसूरत गीत।

जी दोस्तों, सचमुच मैनू फिर दोबारा 10 गल्लां लाहौर दीआं। गल तां सही है जी, जदों वो एक भैड़ा दौर सी उस वेले जदों वंड हुई, और उस वेले

0: जी दोस्तों, सचमुच असीं तेरे शहर नूं सलाम कर चले हैं। वैसे तो इसी तरह दियां जदों यादां पिछे मुड़ जाण ना, उस वेले फिर इंसान थोड़ा जा मायूस हो जांदा है। पर आपस दे विच प्यार तकरार ते हुंदी रहिंदी है, पर सदा लई विछोड़ा ये बहुत ही दुखदाई हुंदा है। इसी तरह मुहब्बत इंसान दी जिहड़ी है वो एक जिंद जान है, होनी चाहीदी है, पर विछोड़ा जिहड़ा है ई इस तरह का दुखदाई नहीं होना चाहिए। लो जी, कॉलर आए नहीं, इन्हों ने पूछते हैं जी। हेलो
1: हेलो, नमस्कार श्याम शर्मा जी।
0: जी, नमस्कार जी, की हाल चाल नहीं, कौन बोल रहे हो?
1: बहुत बढ़िया जी। श्री गुरु रविदास नगर मरोट तो फकीर चंद रसगनिया जी।
0: क्या बात है, फकीर चंद रसगनिया जी, बहुत बहुत

0: जी दोस्तों, गल दिल दी दस सज्जणा झूठे लारियां च की रखिया। क्या आवाज है जी, हरजीत हरमन की आवाज़ दे विच गीत सुन रहे सी तुसी। ते प्रोग्राम सौगात दा वेला हले तां तकरीबन 50 मिनट दा पिया है। जिन्हां दोस्तों ने हले तक सानू कॉल नहीं की है, जरूर कॉल करो। 0181-2342-171 नंबर डायल करो और इस प्रोग्राम च पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो?
1: श्रीकर खान जी, प्रीतम बोल रहा,
0: जी। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत।

0: जी दोस्तों, तुही की कर दे जी, तेनु याद कर दे हैं। क्या बात है जी गल सही है जी। ये कोई ना कोई किसी ना किसी याद कर रहा होना, तो पूछ रहे ने तुही की कर दे जी, तेनु याद कर रहे हैं। गल सही है जी। कोई कह दिंदा जी तेनु याद तां करा जे भुलिया होवां। इस करके ये प्यार मुहब्बत दी गल है, ते प्यार मुहब्बत वाले ही जानते ने। पर साढ़े को कॉलर आ गए ने, देखिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: राम प्रसाद बोलता, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट भगवान।
0: बिल्कुल राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी।
0: राम प्रसाद जी, अज जिवें मैं गल कर रहा सी, इतवार है, संडे है, अज
1: जी
0: पूरा
1: दिन
0: दिन किवें बिताया फिर? अज पूरा दिन
1: वधिया रहा,
0: काम सारे
1: धुप बड़ी
0: नबेड़ते
1: थी अज,
0: अज दे।
1: गर्म बहुत ही, बाहर तो निकलिया नहीं गया।
0: धुप बहुत सी।
1: फिर अंदर के रेडियो सुनते रहे,
0: आय हाय हाय, क्या ही बात है जी। इन्हें चंगा
1: नाले।
0: काम
1: हाँ
0: कीता जे,
1: जी,
0: ये भी चंगा काम कीता। मैं क्या तुसी
1: और रेडियो सुन लिया, जा कोई न्यूज़ करके सुन लिया, या रेडियो तो न्यूज़

जी दोस्तों, फिर की जान वाली हाई नहीं किन्ना चेर लाएंगी। बिल्कुल जी, उस वेले तो फिर मैं क्या ना, दिल तक तक करता है कि सुहाणी ने जाना है तो फिर कदों आएगी, क्योंकि पेके जाके तो फिर सुहाणी का भी जी लग जाता है, क्योंकि जदों सारे मिल के गल्लां बातें करते हैं, भैन भरा माँ प्यो सब इकट्ठे हो जाते हैं। लो जी, पर

जी दोस्तों, भावें बोल तो चाहे ना बोल, बस अखियां दे कोल है जी। ये तो सी प्रोग्राम दे विच गीत दो लच्छियां दा, ते मैनू कॉल आई, साडे दोस्त यूएसए तो सन, कहिंदे कि मैनू नछत्तर गिल दी आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। लो जी, उन्हां नाल गलबात हो गई, लेकिन फोन जिहड़ा है वह ज़्यादातर गलबात अगे नहीं वधा सकी, लेकिन गीत की फरमाइश कर गए फटाफट। कहिंदे नछत्तर गिल दी आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। लो जी, नछत्तर गिल दी आवाज़ दे विच गीत तुहाडे सारयां दे लई उन्हां वल्लों।

0: जी दोस्तों, साडे कॉलर अज दे प्रोग्राम दे आखरी कॉलर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: बोल
0: तरसेम जी दसूए तो बोल रहे हो, ते अज दे तुसी आखरी कॉलर हो। चलण दी यही गी तुहाडी फरमाइश।
1: 11 बजे
0: अच्छा, 11 बजे लगे हुए? ओहो, क्या बात है जी। 1-2 घंटे फिर तो हो गए तुहानू साडे प्रोग्राम च ट्राई करदे नू, है? चलो ठीक है तरसिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो फरमाइश यही चलन दिने जी, 76 गिल की आवाज के, है? शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।

माया मत कहां लोग गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रह ना बिचारो, रथ ना सो न गस सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओस न कोट न छोटा, करत बिका दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरंकी शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन।

ब्रह्मादि शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोज ते गोरख धरन गगन आवत हुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर।

आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन

सर्व रोग खंडन गुणकारी, काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उच्चारी, इशनान दान तापन सच किरया, चरण कमल हृदय प्रबतारी, साजन मीत सखा हर बंदप जीतान, प्रभ प्राण अदारी।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जनम जनम दी सजन सच्चा पाते सा हो सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावेसा सजन सच्चा पाते साहु सिर साहदा जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावेसा।

मैं हर दर्शन सुख होई। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पयाव।

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका। गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होय सहाय अर्जन हर गोबिंदनों सिमराओ।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाव हो गोबर तरन ना जाई तोते टिका तै जप माली धार में शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद ओना पियावे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तीड़ धोती कखाई हाथ छूरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेच तान लै पूजे पुराण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटै वे मत पिटै एह अन्न साडा पिटै तन पिटै पीड़ करीन मन जुठै चुली भरीन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे तां सच पाईए।

चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलांगा आपे दे वड्याइयां आपे ही कर्म कराएगा वड हो वडा वड मेद।